واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل

0: उन्होंने कहा, परवरदिगार मेरे यहाँ किस तरह का लड़का होगा जिस हाल में मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच गया हूँ।
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا।
0: हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे ये आसान है और मैं पहले तुमको भी तो पैदा कर चुका हूँ और तुम कुछ चीज न थे।

0: किया।
1: फिर दर्द जह उनको खजूर के तने की तरफ ले आया, कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकती और भूली बिसरी हो गई होती।
0: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا।
1: उस वक्त उनके नीचे की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज दी कि गमनाक ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है।
0: वह

कहा कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार को है, जो किताब में लिखा हुआ है। मेरा परवरदिगार न चूकता है न भूलता है।

उन्होंने कहा कि जो दलाइल हमारे पास आ गए हैं उन पर और जिसने हमको पैदा किया है उस पर हम आपको हरगिज तरजीह नहीं देंगे, तो आपको जो हुक्म देना हो दे दीजिए, और आप जो हुक्म दे सकते हैं वो सिर्फ इसी दुनिया की जिंदगी में दे सकते हैं।

0: तो उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, यानी उसका कालिब जिसकी आवाज गाय की सी थी। तो लोग कहने लगे कि यही तुम्हारा माबूद है और यही मूसा का माबूद है, मगर वो भूल गए हैं।
1: अफला يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا।
0: क्या ये लोग नहीं देखते कि वो इनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और न उनके नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार रखता है।
1: वला قد

तो शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और कहा कि आज भला मैं तुमको ऐसा दरख्त दूं जो हमें की जिंदगी का समरह दे और ऐसी बादशाहत कि कभी जायल ना हो।

0: और अगर एक बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले सादिर और जजाए आमाल के लिए एक मियाद मुकर्रर न हो चुकी होती तो नुजूल अजाब लाजिम हो जाता।
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح

बस जो कुछ ये बकवास करते हैं उस पर सब्र करो, और सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह तहमीद किया करो, और रात की सात अव्वलीन में भी उसकी तस्बीह किया करो, और दिन की अतराफ यानी दोपहर के करीब जोहर के वक्त भी, ताकि तुम खुश हो जाओ।

और कई तरह के लोगों को जो हमने दुनिया की जिंदगी में आराइश की चीजों से बहरामंद किया है ताकि उनकी आजमाइश करें, उन पर निगाह न करना। और तुम्हारे परवरदिगार की अता फरमाई हुई रोजी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है।

0: कह दो कि सब नताइज आमाल के मुंतजिर हैं, सो तुम भी मुंतजिर रहो। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि दीन के सीधे रास्ते पर चलने वाले कौन हैं और जन्नत की तरफ राह पाने वाले कौन हैं, हम या तुम।
1: सदा।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वक्फे के बाद खुशामदीद। अबू जहल का कत्ल। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैं जंगे बदर के रोज सफ के अंदर था कि अचानक मुड़ा तो क्या देखता हूँ कि दाएं बाएं दो नौ उम्र जवान हैं। गोया उनकी मौजूदगी से मैं हैरान हो गया कि इतने में एक ने अपने साथी से छुपा कर मुझसे कहा, चचा जान मुझे अबू जहल को दिखला दीजिए। मैंने कहा, भतीजे तुम उसे क्या करोगे? उसने कहा, मुझे बताया गया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैंने उसको देख लिया तो मेरा वजूद उसके वजूद से अलग न होगा, यहाँ तक कि हम में से जिसकी मौत पहले लिखी है वो मर जाए। वो कहते हैं कि मुझे इस पर ताज्जुब हुआ। इतने में दूसरे शख्स ने मुझे इशारे से मुतवज्जो करके यही बात कही। उनका बयान है कि मैंने चंद ही लम्हों बाद देखा कि अबू जहल लोगों के दरमियान चक्कर काट रहा है। मैंने कहा, अरे देखते नहीं, ये रहा तुम दोनों का शिकार जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। उनका बयान है कि ये सुनते ही वो दोनों अपनी तलवारें लिए झपट पड़े और उसे मार कर कत्ल कर दिया। फिर पलट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने से किसने कत्ल किया है? दोनों ने कहा, मैंने कत्ल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी अपनी तलवारें पहुंच चुके हो। बोले, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तलवारें देखी और फरमाया, तुम दोनों ने कत्ल किया है। अलबत्ता अबू जहल का सामान मुआज़ बिन अमरु बिन जमू को दिया। दोनों हमलावरों का नाम मुआज़ बिन अमरु बिन जमू और मास बिन अफरा है। इब्ने इसहाक का बयान है कि मुआज़ बिन अमरु बिन जमू ने बतलाया कि मैंने मुशरिकीन को सुना, वो अबू जहल के बारे में जो घने दरख्तों जैसी नेजों और तलवारों की बाढ़ में था कह रहे थे, अबुल हुकम तक किसी की रसाई न हो। मुआज़ रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब मैंने ये बात सुनी तो उसे अपने निशाने पर ले लिया और उसकी सिमत जमा रहा। जब गुंजाइश मिली तो मैंने हमला कर दिया।

0: और ऐसी जर्ब लगाई कि उसका पांव निस्पिंडली से उड़ गया। वल्लाह, जिस वक्त ये पांव उड़ा है तो मैं उसकी तशबीह सिर्फ उस गुटली से दे सकता हूँ जो मौसल के मार पड़ने से झटक कर उड़ जाए। उनका बयान है कि इधर मैंने अबू जहल को मारा और उधर उसके बेटे अकरमा ने मेरे कंधे पर तलवार चलाई, जिससे मेरा हाथ कट कर मेरे बाजू के चमड़े से लटक गया और लड़ाई में मखल होने लगा। मैंने उसे अपने साथ घसीटते हुए सारा दिन लड़ा, लेकिन जब वो मुझे अजियत पहुंचाने लगा तो मैंने उस पर अपना पांव रखा और उसे जोर से खींच कर अलग कर दिया। उसके बाद अबू जहल के पास माउस बिन नफरा पहुंचे, वो जख्मी था। उन्होंने उसे ऐसी जर्ब लगाई कि वो वहीं ढेर हो गया, सिर्फ सांस आती जाती रही। उसके बाद मुआवज़ बिन अफरा खुद भी लड़ते हुए शहीद हो गए। जब मारका खत्म हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो देखे कि अबू जहल का अंजाम क्या हुआ? उस पर सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु उसकी तलाश में बिखर गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे इसी हालत में पाया कि अभी सांस आ जा रही थी। उन्होंने उसकी गर्दन पर पांव रखा और सर काटने के लिए दाढ़ी पकड़ी और फरमाया, ओ अल्लाह के दुश्मन, आखिर अल्लाह ने तुझे रुस्वा किया ना? उसने कहा, मुझे काहे का रुस्वा किया? क्या जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल किया है उसे भी बुलंद पाया कोई आदमी है, या जिसको तुम लोगों ने कत्ल किया है उसके भी ऊपर कोई आदमी है? फिर बोला, काश मुझे किसानों के बजाय किसी और ने कत्ल किया होता। उसके बाद कहने लगा, मुझे बताओ आज फतह किसकी हुई? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल की। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से, जो उसकी गर्दन पर पांव रख चुके थे, कहने लगा, ओ बकरी के चरवाहे, तू बड़ी ऊंची और मुश्किल जगह पर चढ़ गया। वाज़े रहे कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के में बकरियां चराया करते थे। इस गुफ्तगू के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका सर काट लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर हाजिर करते हुए अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये रहा अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सर। आपने तीन बार फरमाया, वाकई उस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसके बाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, तमाम हम्द अल्लाह के लिए है जिसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और तन्हा सारे ग्रोह को शिकस्त दी। फिर फरमाया, चलो मुझे उसकी लाश दिखाओ। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाकर लाश दिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस उम्मत का फिरौन है। सामईन, वक्त की कमी के बायस हम अपने इस सिलसिले को यहीं पर इख्तिताम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली नशिस्त में। इसके साथ ही कासिम भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगेबान।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of Nation.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और आज हमारे मेहमान हैं हम सबके प्यारे, हम सबके हर दिल अजीज डॉक्टर फाहा दनीस। और अभी हम बात कर रहे थे उनकी स्ट्रगल्स, इशूज और जितनी भी अचीवमेंट्स और जितनी भी प्रॉब्लम्स इस फैकल्टी को बनाने में और जिस फैकल्टी के बेसिक से अब तक उन्होंने देखी और फिर इस फैकल्टी की अचीवमेंट्स में किस तरह से अपना रोल प्ले किया। अब सर, अभी जैसे आप बात कर रहे थे मीडिया फेस्ट की, तो अभी हम देखें रिसेंटली हमने कम्युनिकेशन गाला की अनाउंसमेंट किया। मीडिया फेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता होगा कम्युनिकेशन गाला से, बिकॉज मुझे मीडिया फेस्ट का आइडिया नहीं है। सो अब कम्युनिकेशन गाला जो है उसका बेसिक मकसद क्या है, क्यों हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उसका बेसिक मकसद क्या है, और इस साल के कम्युनिकेशन गाला में कौन कौन सी सरगर्मियां जो है वो शामिल है?
2: जी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो मीडिया फेस्ट था वो उस टाइम यूसीपी जो मीडिया क्लब है उसका एक इवेंट था। जो क्लब का इवेंट होता है ऑब्वियसली दो, वो क्लब भी फैकल्टी का हिस्सा है, लेकिन क्लब की एक्टिविटीज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स इसलिए होती है कि वो उसको मैनेज भी कर रहे होते हैं, उसको अरेंज भी कर रहे होते हैं, आइडिया भी हमसे डिस्कस करते हैं, हम लोग उसको सुपरवाइज करते हैं, तो उसमें हम थोड़ी सी वैरायटी और तरह से ऐड कर सकते हैं। जहां तक कम्युनिकेशन गाला का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंसीव किया था फ्रॉम कम्युनिकेशन कार्निवल इनिशियली। और प्लान है कि हम एक इस तरह का मेला सजाएं यहां पे जिसको फैकल्टी खुद से होस्ट करे, और उस मेले के अंदर जो हमारे अपने स्टूडेंट हैं यूसीपी के, क्योंकि आपको पता है कि हम एज अ फैकल्टी ऑफ मीडिया बहुत सी इवेंट्स करवाते हैं, फिल्म फेस्टिवल का भी हमारा होता है, हम सिंपोजियम भी करवा रहे होते हैं और भी कंपटीशन चल रहे होते हैं, थिएटर के भी आपको पता है कि हम अपने इंडस्ट्रियल पार्टनर के साथ ये कंपटीशन करवा रहे होते हैं, तो उसमें ज्यादातर जो एंट्रीज होती हैं वो यूनिवर्सिटी से बाहर आ रही होती हैं। इसी तरह जो यूसीबी का टाकरा है उसमें भी ऐसा है कि यूसीबी से बाहर की एंट्रीज आ रही है। तो हमने ये जो माइंडसेट था इसके बैकएंड पे वो ये था कि एक तो ओवरऑल जेनेरिक इवेंट हो और उसमें अपने हमारे यूसीपी के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हों कि वो उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकें, उसमें आए अपने जो भी उनकी स्किल सेट है, जैसे भी आपने बताया कि हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में कंपटीशन दिए, मिसाल के तौर पे पोस्टर कंपटीशन है, फिर हम इसमें सोशल मीडिया रील्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, फिर इसी तरीके से हमने टेलीविजन कमर्शियल या पब्लिक सर्विस मैसेज की एक कैटेगरी दी है, और फिर जो हमारी इसमें लास्ट कैटेगरी है वो टीवी एंकरिंग एंड होस्टिंग की है।
1: ठीक है,
2: तो इसको हमने ओपन किया तमाम फैकल्टीज जो यूसीपी के अंदर हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए कि वो आए इसमें पार्टिसिपेट करें, और फिर इसके अगेंस्ट प्राइज मनी भी है विनर की भी और रनर अप की भी। तो आइडिया ये था कि हम अपने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दें, उनके पास भी ऐसे मौके हों कि वो यूनिवर्सिटी में रहते हुए जो अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या उन्होंने जो चीजें सीखी हैं उसको इम्प्लीमेंट करें और उसका हिस्सा बन सके।
1: सो सर, इसमें एज अ पार्टिसिपेंट सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं या अदर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं?
2: फिलहाल हमने जो कम्युनिकेशन गाला के लिए रखा है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं हम उनके साथ ही, यानी कि वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं।
1: और ये पार्टिसिपेशन से उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ में क्या ऐसा जो है मेन अचीवमेंट्स आएंगी या इसका क्या रोल होगा उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ में?
2: जी, जो सेकंड पार्ट था जो मैं आपको बताना चाहूँ वो यही है कि एक तो हम इसको बच्चों की पार्टिसिपेशन को, एंगेजमेंट को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि बच्चे जो अपने सब्जेक्ट्स के अंदर थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं उनको एक मौका मिलेगा कि वो अपनी उन स्किल्स को शोकेस कर सके। मिसाल के तौर पे एडवर्टाइजिंग एंड पीआर के स्टूडेंट्स जो अपनी स्पेशलाइजेशन के आखिरी मराहल में हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि टीवीसी के शूट कैसे किया जाता है, उसका कॉपी कैसे लिखनी है, उसका आइडिया कैसे बनाना है और पूरी स्टोरी बोर्डिंग क्या करनी है। फिर इसी तरीके से जो बच्चे टीवी एंकरिंग एंड होस्टिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए ये है कि वो एक ऐसा कंपटीशन में आए, कंपटीशन के आने से देखिए एक तो बेनिफिट ये होगा कि वो अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा मुझे लगता है कि इस तरह के कंपटीशन एक हेल्दी जो है एनवायरमेंट डेवलप करते हैं।
1: और जैसे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और उन्हें क्रेज है कि वो टीवी सीरीज शूट करें, पीआर या एड की कोई भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं या फिल्म से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे पास जितने अदर सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं इन सब सब्जेक्ट्स में। क्रॉस,
2: क्योंकि फैकल्टीज पार्टिसिपेशन होगी, एक अच्छी नेटवर्किंग भी होगी इसके हवाले से, और दूसरा ये है कि हमारे अपने स्टूडेंट का काम भी शोकेस होगा। इस तरह कंपटीशन से जब वो विन करेंगे तो उनको ऑब्वियसली इंकरेजमेंट भी मिलेगी, वो इंकरेज होंगे कल को इससे ज्यादा अच्छा काम करने के हवाले से, और फिर क्योंकि इसमें जजेस होंगे, इसमें एक्सपर्ट्स होंगे, तो वो उनको फीडबैक भी दे रहे होंगे कि हाउ दे कैन इंप्रूव देयर वर्क, तो ये उनके लिए फ्यूचर उनके करियर के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो इसी वजह से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट भी करें और एक कंपटीशन की फिजा को बहुत अच्छा और पॉजिटिवली लेकर चले।
1: और सर, जैसे अभी आप जजेस की बात कर रहे थे, तो क्या मीडिया इंडस्ट्री से और जितने प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं, क्या वो इनवाइटेड होंगे एज ए जजेस और वो इस गाला का हिस्सा होंगे?
2: जी बिल्कुल, कोशिश तो यही है कि इस गाला के अंदर हम लोगों ने एक और छोटा सा सेगमेंट लेके आ रहे हैं और वो करियर काउंसलिंग का है। हमने ओवर द इयर्स देखा है कि स्टूडेंट में ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि जब वो अपने 5 सेमेस्टर के बाद 6ठे सेमेस्टर में जाना होता है और वो स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करनी है और फिर फ्यूचर इस वक्त इंडस्ट्री में करियर किसमें बेहतर है, तो उसके हवाले से कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी रहते हैं। तो हमने इसका एक हिस्से में एक करियर काउंसलिंग सेमिनार को भी हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम जो हमारी मीडिया की सब फील्ड्स हैं उससे ताल्लुक रखने वाले लोग, एक्सपर्ट्स आएं और उनको बताएं कि उनकी इस इंडस्ट्री में जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे वो अपने आप को स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए इक्विप्ड करें, क्या स्किल सेट सीखने की जरूरत है जो उनको कल को जॉब तलाश करने में और अच्छा करियर बनाने में मदद करेगी। तो डेफिनेटली एक तो इस हवाले से भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, दूसरा जहां जजेस आ रहे हैं, जजेस में हमारी कोशिश ये भी है कि कुछ एक्सपर्ट्स भी बुलाए जाएं। डेफिनेटली एक्सपर्ट्स ही आएंगे, वही इनको जज करेंगे और उन एक्सपर्ट्स में हमारी कोशिश है कि जो हमारे अपने अलुमनाए हैं जो इसी तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं, तो हम उनको ही बुलाएं एज अ जजेस ताकि वो भी एक प्राउड फील कर सके अपने अल्मा मैटर्स में वापस आके, अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन में वापस आके जहां से उन्होंने सीखा और आज वो बहुत अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं।
1: और साथ हमारे स्टूडेंट्स जो इस पूरे गाला का हिस्सा है, पार्टिसिपेंट है, वो भी सीख सकें कि एज इन टाइम अगर वो भी इसी तरह से मेहनत करेंगे तो दे विल बी ऑन दैट पोजीशन।
2: मोटिवेशन भी है कि ये वही स्टूडेंट जो यहां से पढ़ के इन जगहों पे जाके।
1: और सर इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं इसमें नेटवर्किंग किस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो अपनी इनहांस कर सकते हैं या नेटवर्किंग का कितना मौका मिलता है उनको एक दूसरे से सीखने का, डिफरेंट और अदर मीडिया पर्सनालिटीज से या किसी स्पेशलिस्ट से या स्किल सेट जो उनका है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं स्पेसिफिकली विद रेलिवेंस टू नेटवर्किंग?
2: नेटवर्किंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है और खासतौर पर अगर हम मीडिया के स्टूडेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि उसका तो शायद सर्वाइवल ही नहीं है नेटवर्किंग के बगैर। और इस तरह के इवेंट्स की अगर हम बात करें तो एक तो मैनेजेरियल सेट से देखेंगे, वो स्टूडेंट जो उसको मैनेज कर रहे हैं तो उनकी अपनी फैकल्टी मेंबर्स के साथ, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक नेटवर्किंग बनती है, उनको पता लगता है कि एक्चुअल काम करने का तरीकाकार क्या है। इसी तरीके से जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये क्रॉस फैकल्टी यहाँ पे पार्टिसिपेशन आएगी, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और पहले भी जैसे कि अक्सर फैकल्टी से करते हैं, साइकोलॉजी वाले करते हैं, लॉ वाले बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट साइंसेज से आती है, पोस्टर डिजाइनिंग के हवाले से आईटी डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा एंट्रीज आ रही होती है हम लोगों को। और फिर क्योंकि एंकरिंग एंड होस्टिंग इज अ प्लेटफॉर्म जिसके लिए जो भी समझता है कि मेरी आवाज में इतना दम है और मैं उसमें स्ट्रेस एंड पॉजेस बहुत अच्छे तरीके से ला सकता हूँ, तो बहुत से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब क्रॉस फैकल्टी पार्टिसिपेशन होती है तो उसमें बच्चे सीखते हैं एक दूसरे से, उनका मौका मिलता है एक दूसरे को जानने का। उस इवेंट में जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, उनकी प्रैक्टिस क्या चल रही है और कैसे वो कम्पीट कर रहे हैं, माइंड सेट क्या है, मुझे लगता है कि शायद एक इंसान एक छोटी सी शेल से निकल के एक बड़े शेल में जाता है जहां पे उसको आईटी का माइंड सेट डिफरेंट है, मैनेजमेंट का जो स्टूडेंट उसका माइंड सेट एक अपने अंदाज से है कि वो कैसे सोचता है एक प्रोडक्ट को शूट करना है या अगर कोई पोस्टर डिजाइन करना है उसमें वो उसके जो विजुअल एलिमेंट्स हैं वो उनके उनको कैसे परसीव कर रहा है। तो आई थिंक ये लर्निंग भी है और नेटवर्किंग भी है कि स्टूडेंट जब क्रॉस फैकल्टी मिलते हैं, बात करते हैं, कम्पीट करते हैं, तो दे केम टू नो एंड हाउ वी कैन इंक्रीज आवर स्किल सेट।
1: ऐसे ही है मेरे ख्याल से इस तरह के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, गालाज होते हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेवेंट जो भी बच्चों को सीखने का मिलता है तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको किसी भी तरह से मिस नहीं करना चाहिए। सो सर जैसे अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं तो इस कम्युनिकेशन गाला में बच्चे किस तरह से एंट्रीज भेज सकते हैं?
2: इसके लिए हमने जो एक तो सोशल मीडिया पे पोस्टर हमने बना के अनाउंस भी किया गया, तो उसमें एक तो QR कोड मेंशन किया गया है बकायदा और इनकी बाकी तमाम जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग ABC इसकी लॉबीज में स्टैंडर्ड्स भी डिस्प्ले की गई हैं जिसपे QR कोड मेंशन है, आप उसको स्कैन करें और स्कैन करके आप डायरेक्टली यू विल लैंड इनटू अ ऑनलाइन फॉर्म जिसको आप फिल करेंगे और उसको फिल करके अपने जो भी डिटेल्स हैं जिसमें आपकी जो बेसिक आपके रजिस्ट्रेशन फैकल्टी नाम फोन नंबर और जिस कैटेगरी के आप आना चाह रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एंट्री फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम चाहते हैं स्टूडेंट को इंकरेज करना चाह रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, अपने स्किल सेट को पॉलिश करें, उसको आजमाएं कई कंपटीशन में, तो इस हवाले से वो QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं अलॉन्ग विद द QR कोड फैकल्टी ऑफ मीडिया के सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी इसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप वहां से भी लिंक को डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं और वहां पर भी फॉर्म फिल।
1: और सर जो इंस्ट्रक्शंस हैं अगर जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने रील सबमिट करवानी है या उन्होंने डॉक्यूमेंट्री सबमिट करवानी है तो सर रिलेवेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो ऑलरेडी हैं या उनको बताई गई हैं या किसी तरह से पोस्टर्स वगैरह पे भी हैं?
2: एक तो जो हमने गूगल फॉर्म ऑलरेडी प्लान किया हुआ है जिसको हमने बनाया, उसमें कुछ थीम और सब थीम ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सेकंड, हम लोगों ने डिटेल के लिए ऑलरेडी इसमें कुछ व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं फोकल पर्सन के, ताकि स्टूडेंट अगर कोई इसमें फर्दर डिटेल इंस्ट्रक्शन लेना चाह रहे हैं, कहीं कन्फ्यूज हैं, तो वो उनको वहां भी इनकी कन्फ्यूजन दूर भी कर दी जाएगी। इसके अलावा हमारे जो फॉर्म के जो इंट्रोडक्शन है, हमने उसका एक छोटा सा ब्रीफ भी इसके अंदर मेंशन किया है। तो आई होप सो कि काफी सारी इंस्ट्रक्शन वहां पे मेंशन है जो बच्चों को क्लियर हो जाएंगी। एंड देन लेटर ऑन वंस हमारी रजिस्ट्रेशन रिसीव हो जाएंगी, तो हम लोग जो स्टूडेंट जिस कैटेगरी में है, तो हम उनकी मजीद बेहतर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनको कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ अगर रिक्वायर्ड होगी तो वो उस पे भी उनको वो दी जा सकती है इस हवाले से।
1: ठीक है, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। अभी हम चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। आप सुन रहे हैं FM 92.6 और मैं हूँ मरियम इरशाद।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6. मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ. और हमारे पास आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर फाहद अनीस, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन गाला के बारे में. सर, अगर कम्युनिकेशन गाला की बात की जाए तो हम हर साल, आपको पता है कि बहुत अच्छा, पूरी फैकल्टीज और पूरी यूनिवर्सिटीज में से हमारा जो एक फिल्म फेस्टिवल है उसको हर जगह पर माना जाता है कि यस, फिल्म फेस्टिवल फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन UCP का दी बेस्ट है. तो कम्युनिकेशन गाला और फिल्म फेस्टिवल किस तरह से डिफरेंट है, और क्या कम्युनिकेशन गाला इन फ्यूचर हम इंटर यूनिवर्सिटी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अलावा डिफरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज का हिस्सा बनेगा?
4: जी, थैंक यू वेरी मच. कम्युनिकेशन गाला और अगर फिल्म फेस्टिवल की बात करूँ तो फिल्म फेस्टिवल आज से 4 साल पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जब हम फिल्म की स्पेशलाइज डिग्री लॉन्च कर रहे थे. और उसके पीछे भी यही मकसद था कि जो स्पेशलाइज डिग्री हो तो उसके साथ एक स्पेशलाइज्ड इवेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकें. तो आपके पास बिल्कुल दुरुस्त है कि अब 4 साल हर साल हम तकरीबन करते हैं, और हमारा जो फिल्म फेस्टिवल है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हर साल से ऑर्गेनाइज होता है, और उसमें हर साल बेहतर से बेहतर आप कह लें कि एंट्रीज भी आ रही है, बल्कि इस साल तो इंटरनेशनल एंट्रीज भी आई हैं. तो एक चीज़ तो जो हमने कम्युनिकेशन गाला और फिल्म फेस्टिवल का जो डिफरेंट बनाता है वो ये कि फिल्म फेस्टिवल इज ओपन फॉर एवरीवन. उसमें यूनिवर्सिटी से बाहर से बहुत सी एंट्रीज आती हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि कम्युनिकेशन गाला में फिलहाल हम इसको खाली अपने UCP तक ही महदूद कर रहे हैं. और दूसरी बात यह कि हमने ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं होने दी. फिल्म फेस्टिवल में द फोकस इज इन कि हम फिल्म क्या कंपटीशन दे रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्री का कंपटीशन होता है, और उसके साथ साथ हम लोग म्यूजिक वीडियो को हम लोग देख रहे होते हैं. जबकि इन्हीं तीनों कैटेगरीज को हम लोगों ने कम्युनिकेशन गाला में इनकॉर्पोरेट नहीं किया. कम्युनिकेशन गाला में हमने वो सेगमेंट्स ऑफ द मीडिया पिक किए हैं जिनको हम फिल्म फेस्टिवल में टच नहीं करते. जैसे मैंने आपको बताया कि टीवी एंकरिंग होस्टिंग है, रील्स के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, पोस्टर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, और टेलीविजन कमर्शियल और PSM की बात कर रहे हैं, ताकि हम बाकी फील्ड्स ऑफ द मीडिया को भी टच किया जा सके.
3: और सर, जैसे अभी आप बता रहे थे रील्स की बात कर रहे हैं और हम कमर्शियल्स की बात कर रहे हैं और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज हैं, तो क्या कुछ स्पेसिफिक इशूज हैं जिनके ऊपर कहा गया बच्चों को, या दे आर फ्री टू मेक वट एवर दे कैन इन बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटीज?
4: जहां तक तो बात टेलीविजन कमर्शियल्स की है या पब्लिक सर्विस मैसेज की है, तो उधर हम लोगों ने ओपन कैटेगरी दी है, क्योंकि टेलीविजन कमर्शियल्स के लिए स्टूडेंट को किसी एक खास टॉपिक या एरिया पे कन्फाइंड कर देना तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर इतने शॉर्ट टाइम में टेलीविजन कमर्शियल निकालना सम टाइम मुश्किल हो जाता है. लॉन्ग बिजर अदर दो शॉर्ट तो नहीं, हम लोग एक अच्छा डेडलाइन दे रहे हैं, लेकिन स्टिल अच्छा टीवी से निकालने के लिए एक फोकस टाइम चाहिए होता है. तो हमने उसमें प्रेफरेंस यही दी कि ओपन कैटेगरी है, तो वो चाहे किसी ब्रांड की प्रमोशनल कैंपेन के हवाले से TVC कर रहे हों और या कोई सर्विस पब्लिक सर्विस मैसेज दे रहे हों. जहाँ तक रील्स की बात है तो उसके लिए हम लोगों ने जरूर कुछ थीम्स दी हैं, जिनमें से एक फोकस हमारा, जैसे आपको पता है कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बात हो रही है, तो हमने उसके हवाले से दिया गया क्लाइमेट चेंज के हवाले से हो. सोशल इश्यूज पे अगर कोई बनाना चाह रहा हो, बहुत से हमारे सोसाइटी के ऐसे प्रॉब्लम है जिनको हाईलाइट किया जा सकता है. और फिर इसमें कुछ हमने फनी वे में भी हम चाह रहे हैं कि लोग ऐड ऑन करें कि द मोमेंट दैट मैटर्स, कि कौन सा ऐसा लम्हा है जो आपको लगता है कि यस दिस इज इट, तो उसको भी
3: जिसने आपकी जिंदगी बदल दी
4: या जिसने
3: आपको डिप्रेशन दे दिया,
4: इट कैन बी एनीथिंग. तो इस तरह के हमने एरियाज को दिया हुआ है उसके, ताकि स्टूडेंट उस खास थीम से रिलेटेड काम कर सके.
3: सर, कम्युनिकेशन गाला और फिल्म फेस्टिवल और आपकी फैकल्टी की अचीवमेंट्स और स्टार्ट से लेकर अब तक का सफर के ऊपर गुफ्तगू करके बड़ा मजा आया. मैं आपसे ये आखिर में बिल्कुल पूछना चाहूंगी कि अगर आप हमारे सामाइन को और हमारे स्टूडेंट्स को अपनी प्रोफेशनल या अपनी एजुकेशनल लाइफ में से कोई एक चीज जो आपने सीखी या एक ऐसा सबक जो आपको याद रह गया और उसको आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, तो वो ऐसा क्या है जो आप इनके साथ शेयर करना चाहेंगे?
4: वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं इंसान की लाइफ में, और ये जो आखिरी सवाल होता है सबसे मुश्किल होता है नॉर्मली, जब भी जितने मैंने इंटरव्यूज दिए मुझे लगता है ये बड़ा टफ है अपनी पूरी लाइफ में से कोई ऐसी चीज़ समराइज करना. लेकिन एक चीज़ मैं अक्सर, बल्कि एक दिन पहले भी मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, ही वॉज वेरी डिप्रेस कि सर जॉब्स की समझ नहीं आ रही, करियर के हवाले से क्या करें. तो कहता मुझे किसी ने कहा कि सिर्फ हाथ के पास जाओ, तो मैंने उसको कहा, और कहता सर आप, यानी कि इनिशियल आपका पहला क्वेश्चन भी था और आखिरी में उसको रिलेट भी कर लेता हूँ. जो एक चीज़ मुझे आज तक याद है, जो मेरा कह लें कि मेन एक, मैं जिसको प्रैक्टिस भी करता हूँ, क्योंकि जब हम लोग भी अपने इनिशियल करियर में थे तो सम टाइम ऐसा टाइम आता था कि जॉब्स नहीं मिल रही, टेस्ट दे रहे हैं, फेलियर्स हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि कब
3: क्या होगा, कैसे होगा, कुछ होंगे भी या नहीं, हमारे साथ वाले आगे निकल गए, हम पीछे रह गए,
4: घर वाले हैं, उनकी नजरें आपसे कुछ पूछ रही हैं, कुछ जानना चाह रही है. तो वो कुछ सर्टन टाइम बड़ा टफ होता है और मुझे लगता है चैलेंजिंग भी होता है, और फिर हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी के साथ आ रहा होता है, तो उसमें से अपॉर्चुनिटी ग्रैब भी करनी होती है. तो उस टाइम पे हमारे एक टीचर है, तो हम अक्सर तीन दोस्त ना उनके पास चला जाया करते जब भी हम फील करते यार नाउ वी आर फीलिंग लो, तो वो उन्होंने जब हमने जाना तो उन्होंने हमें इस तरीके से मोटिवेट करना, और बल्कि मैं उनका नाम भी देता हूँ, नईम मुस्तफा साहब हैं, मैं इसलिए उनको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ कि उन्होंने हमारे टफ टाइम में हमें बहुत ज्यादा हमें मेंटोरिंग की है। व्हेन वी वेंट टू हिम तो वो हमें वहां पे बैठे बैठे करोड़पति बना दिया करते थे, इस हद तक मोटिवेट करते थे वो हमें।
3: टीचर जो है वो एक बच्चे की लाइफ में, एक स्टूडेंट की लाइफ में एक टीचर और उसके पेरेंट्स का बहुत रोल होता है,
4: तो वो बहुत मोटिवेट किया करते थे। और उसके बाद उन्होंने तीन बातें हमें कही कि यार इस पे ना आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, या जो भी आप अपना बेस्ट दे सको वो दो। उन्होंने कहा जी एक, अगर किसी का रिस्क लगवाना हो, जॉब लगवानी हो, तो जितनी एफर्ट आप उसमें डाल सको आप डालो नेक नीयत के साथ, तो कभी इससे पीछे नहीं हटना। दूसरा उन्होंने कहा जी कि लोगों की हेल्थ के हवाले से अगर कोई इशू हो और अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सके किसी भी तरह से, उनको कहीं अच्छा मशवरा दे के फाइनेंशियली या कहीं गाइड करके या किसी को रिक्वेस्ट करके कि उनको जो भी फैसिलिटी उनको मिल सके, तो उस पे हेल्थ के हवाले से जो भी उनको फैसिलिटी चाहिए तो कोशिश करें टू द बेस्ट ऑफ योर आप उसको परफॉर्म करें। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा जी कि एजुकेशन के लिए, अगर आपको किसी के एजुकेशन के लिए जो भी एफर्ट करनी पड़े, जिस भी हद तक जाना पड़े, जरूर जाएं। अगर ये इन तीन चीज़ों को आपने सबका जारी है समझ के करना है, और वही कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं की जो चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई उसी को अमानतन एज इट इज आगे पहुंचा रहे हैं। और आई थिंक यही मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है, और जिसको मैं बाकायदा कॉन्शियस माइंड में रखते हुए प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो यही मैं अपने सामईन को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने कोलीग्स को कहना चाहूंगा कि इन चीज़ों को फॉलो करें, एंड देन रेस्ट इज अपॉन वो हमेशा अच्छा ही करेगा।
3: आपसे गुफ्तगु करके बहुत मजा आया, मैंने तो बहुत कुछ सीखा आपके कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया आपने फिकेलिटी आर के लिए हमें वक्त दिया और हमारे लिसनर्स को और मुझे सीखने के लिए इतना कुछ दे दिया। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं FM 92.6, और इसी के साथ हमारे ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। इनशाला अगले वीक दोबारा एक मजे से अच्छे से मेहमान के साथ हम फिकेलिटी आर में आपके साथ दोबारा कनेक्ट करेंगे। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCB की दुनिया। मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चरर फिकेलिटी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फिकेलिटी आर के साथ।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने, एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
3: تازگی کا سفر طے کیجیے
4: علیک یا سیدی
3: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
4: سید الاولین والآخرین
3: FM 92.6
5: السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں UCP کی دنیا FM 92.6، میں ہوں آپ کا میزبان عامر یزدانی، پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ڈاکٹر خالد ظہیر ہیں۔ ہمارا پچھلے ہفتے سے جو موضوع چلا آ رہا ہے وہ تھا چند سوال اور ان کے جواب، اور اس میں ہم نے بات شروع کی تھی، پہلے سوال پر یہ پورا پروگرام ہو گیا تھا جس میں ہم نے بات شروع کی تھی ڈاکٹر صاحب کے، یہ کانسیپٹ ہے کہ پورا قرآن بے کے نقطے میں، آپ نے اس پہ بڑی وضاحت فرمائی۔ اس میں ایک سوال میں سمجھتا ہوں رہے گی، اگر ہم اسی سے شروعات کریں۔ جنرلی یہ ایک دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی اسپیکر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، جس کو آپ موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں یا انسپریشنل اسپیکر جو ہمارے معاشرے میں ہے، تو جب وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں یا موٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ صوفیانہ مزاج کے کی کوٹیشن سے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ قرآن کو بیس نہیں بناتے، وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس سے بیس بناتے ہیں، غالباً اس میں زیادہ نرمی پائی جاتی ہے یا مزاج ایسا ہوتا ہے، اس پہ آپ کچھ تبصرہ فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب؟
6: بڑا اہم سوال ہے جزدانی صاحب، اور واقعی یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر اس شخص کو کچھ پریشان کرتی ہے کہ جو قرآن مجید سے اچھی طرح واقف ہے، کہ آخر قرآن کی آیات کیوں پیش نہیں کی جاتی اور صوفی بزرگوں کے اقوال کیوں پیش کیے جاتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں، یہ معاملہ کچھ پیچیدہ ہے لیکن میں اس کو جتنا مجھے سادہ طریقے سے معلوم ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مذہب ہے نا، جس کو آپ مذہب کہتے ہیں، دین بھی ہم اس کو کہتے ہیں، یہ ہر انسان کی فطری ضرورت ہے، میری ہے، آپ کی ہے، ہندوؤں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، یہودیوں کی ہے۔ یہ جو ہے نا مذہب بیزار لوگ اور ایتھیز، یہ تعداد میں کبھی بھی میجورٹی میں نہیں ہو سکتے، یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ اب جب آپ کسی خاص معاشرے میں، سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں، کہیے کسی خاندان کی روایات میں پیدا ہوتے ہیں، تو آپ وہی مذہب اختیار کر لیتے ہیں، یہ آپ کی مجبوری ہے۔ کسی ایک مذہب کو چھوڑ کر کسی نئے مذہب کو اختیار کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ لوگ جو کرتے ہیں ان کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو اب مسلمانوں کی یہ مجبوری ہے کہ ایک جانب تو وہ اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں پریزنٹ کریں۔ میں اس کو پازیٹیو انداز میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا۔ ظاہر ہے کہ مجبوری سے مراد یہ کہ وہ اسلام ہی کو اللہ کا دین سمجھتے ہیں، وہ اس پر کنونسڈ ہیں، لیکن دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جن لوگوں کو قرآن مجید کو کوٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، वो ये महसूस करते हैं कि वो बड़े सख्त हैं, और कुरान ही में से वो ऐसी बातें पेश कर रहे हैं जिसमें सख्ती है, नफरत है, शिद्दत है, इंसानी जान के हुरमत के लिए कोई उनके यहाँ एहसास नहीं है, वगैरह वगैरह। तो अब मज़हब तो नहीं छोड़ा जा सकता, इस्लाम तो नहीं छोड़ा जा सकता, तो वो अपने अंदर के इस जज्बे और ख्वाहिश का इजहार फिर ऐसे करते हैं कि इस्लाम ही के नाम पर, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो सूफिया हैं, जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में खास तौर पर बहुत काम किया, उनके वो अकवाल पेश करते हैं और कहते हैं कि ये दीन को हमसे ज्यादा जानते थे ना, इन्होंने दीन का अरक, दीन की स्पिरिट बयान की है, और उससे वो लोगों को मोटिवेट करते हैं। ये सवाल तो आपने नहीं किया, लेकिन मैं एक और सवाल का जवाब दे रहा हूँ, उस पर आप मजीद भी अगर आप पूछिएगा, कि ये सवाल फिर उठता है कि फिर करें क्या, गलती किसकी है, और ये आपके ख्याल में अगर ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे ना करें तो फिर क्या करें? तो मैं इस सवाल के बारे में कहता हूँ कि बड़ा अच्छा सवाल है, मैंने किया है। इसका जवाब ये है, और आप जानते हैं इस जवाब को, कि इसका जवाब ये है कि जनाबे वाली, इस सूरत हाल का एक ही हल है कि कुरान मजीद को सही तरह से समझें, अक्ल इस्तेमाल करके समझें, क्रिटिकली एग्जामिन करके समझें, तो आपको ये बात मालूम होगी, आप पर यह हैरत अंगेज खुशगवार इनकशाफ होगा कि कुरान हर तरह के किसी दूसरी सोर्स से कहीं ज्यादा बुलंद है, इंसान दोस्त है, अल्लाह की रहमत की खुशखबरी को बांटने वाला पैगाम है, इंसानी जान की हुरमत को आखिरी हद में बयान करने वाला पैगाम है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे बहुत से मुसलमानों ने कुरान मजीद की उन आयात को, कि जो एक खास दौर में अल्लाह के अजाब का बयान था, वो अजाब के जो कौम पर आया, मैं ये बार बार कहता हूँ, और अल्लाह ने उम्र की मोहलत दी तो मैं कहता रहूँगा इंशाल्लाह आखिरी दिन तक, कि इस दौर की सबसे बड़ी ट्रेजिडी ये है, सबसे बड़ी ट्रेजिडी, मैं पूरे दुनिया के तनाजुर में कह रहा हूँ, कि बहुत से मुसलमानों ने कुरान मजीद की उन आयात को, कि जो ईरा स्पेसिफिक थी, एक ज़माने के लिए थी, उनको जनरलाइज कर लिया। मैं इसको ट्रेजिडी क्यों कहता हूँ, दो वजूहात से। एक तो ये कि इसकी वजह से तबाही मची है, बंदे मरे हैं, कुछ हमारी गलती की वजह से और कुछ उसके रिएक्शन की वजह से। दुनिया में जो टेंशन है इस वक्त, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है। आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं, आप कह सकते हैं आप एग्जैजरेट कर रहे हैं, मैं इस पे कन्विंस्ड हूँ। और दूसरी बड़ी ट्रेजेडी ये है कि वो कुरान, वो अल्लाह का पैगाम, कि जो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए आया था, अब हम दुनिया के इंसानों को पेश ही नहीं कर सकते, इसलिए कि इंसान किसी ऐसे पैगाम को अल्लाह के पैगाम के तौर पर मानने के तैयार हो ही नहीं सकते, जो नफरत, दुश्मनी और इंसानी जान को तल्फ करने को एक दीनी मकसद के तौर पर पेश करें।
5: डॉक्टर साहब, चूंकि इस प्रोग्राम का नाम ही है चंद सवाल और उनके जवाब, तो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है,
6: क्योंकि
5: वो चार पाँच सवाल ऐसे हैं जो माशरे में बड़े उसकी एक परसेप्शन है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर, एक टर्म बोली जाती है मकरूह, कि जी ये काम मकरूह है, मसलन कुछ हराम होता है, जिस तरह शराब नोशी है या जुआ है, अल्लाह ने कहा एक गंदे शैतानी काम है, एक अच्छा फिर लोग पूछते हैं कि जी चाय और सिगरेट के बारे में आपका क्या राय है, जिसमें खुमर नहीं है, जिसमें नशा नहीं है, चाय और सिगरेट जितना भी पी ले नशा नहीं चढ़ता उसमें, तो फिर उन्होंने बहरहाल मकरूह कहते हैं, क्या ये मकरूह किस ज़िम्मे में आते हैं, तो मकरूह को आप किस तरह डिफाइन करेंगे डॉक्टर?
6: देखिए, जो हमारे फुकहा है ना, जिन्होंने दीन पर गौर किया और ख़ास तौर पर जो दीनी अहकाम हैं उनको समझने और समझाने का काम किया, तो उन्होंने अहकाम की कैटेगरीज बनाई। असल में तो आप देखें तो दो हैं बड़ी कैटेगरीज जो बनती हैं, बल्कि तीन। एक है हराम। हराम क्या है? वो काम, वो अमल जिसको अगर आप करेंगे तो आप गुनाह करेंगे, खुदा की हदूद को फलांगेंगे, और जाहिर है कि आप अल्लाह के यहाँ उसके लिए जवाब दें, सिवाय इसके कि आप तौबा करें। एक दूसरी एक्सट्रीम है फ़र्ज, यानी वो काम कि जो अगर आप करेंगे तो बड़ी नेकी का काम है, नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे, आप पे करना लाजिम है। अब मैं मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है, जाहिर है सूअर का गोश्त खाना हराम है, पाँच वक्त नमाज पढ़ना फ़र्ज है, तो ये दो कैटेगरीज हैं। दरमियान में एक तीसरी कैटेगरी बनती है, बिल्कुल बीच में, आप अगर वो जो है कॉन्टीन्यूम का एक तसव्वुर है, बाद स्टूडेंट्स इसको समझते होंगे कॉन्टिन्यूम, एक एक्सट्रीम है, एक दूसरी एक्सट्रीम है, लेकिन दरमियान में एक ऑप्शंस पॉसिबिलिटीज की एक दुनिया है। तो बिल्कुल दरमियान में एक तीसरी चीज है जिसको आप कह सकते हैं मंदूब, पसंदीदा, और भी इसके लिए अल्फाज हैं, जायज, नहीं सॉरी नहीं मंदूब नहीं, मैं मंदूब नहीं कहना चाहता, ये गलती होगी मुझसे, जायज जो अलाउड है, यानी आप करें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जायज की जो दुनिया है, जायज की जो कैटेगरी है, ये बहुत ज्यादा है, यानी दुनिया की अक्सर चीजें जायज हैं। वो एक शायर ने कहा ना कि दुनिया भी एक बहिश्त है अल्लाह हरे करम, किन नेमतों को हुक्म दिया है जवाज का, यानी कितनी नेमतें हैं जिनको तूने जायज करार दिया है, तो ये भी एक जन्नत है। सो ये तो है दरमियान की कैटेगरी। अब अगर आप इस पिक्चर को सामने रखें, ऑन वन हैंड हराम, ऑन द अदर हैंड एक्सट्रीम फर्ज, और दरमियान में जायज, तो अब जायज से जाएं आप हराम की तरफ, तो दरमियान की जो कैटेगरी है वो है मकरूह।
5: एक जायज अगर आप
6: हराम की तरफ जाएं तो ये कॉन्टिन्यूम है ना, ये है मकरूह। सो क्या मतलब है, यानी वो काम, यानी एक बुनियादी डेफिनेशन ये दी जाती है कि वो काम जो अगर आप करेंगे तो गुनाहगार तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छा करेंगे, बेहतर काम होगा वो। जैसे मसलन सिगरेट, इसके बारे में आम तौर पर ये कहा जाता है, लेकिन इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है। ये जो मकरूह की मैंने अभी डेफिनेशन आपको दी, ये है बाकी दूसरे फुकहा की, हनफी फिका जो हमारे यहाँ ज्यादा पॉपुलर राइज है, इसमें फिर एक और इस तरह आ गई, मकरूह तंजीह, यानी जो कुछ हराम के करीब है। सो अब हराम तो होगी ना वो बिल्कुल एक्सट्रीम कैटेगरी, और मैं हराम के बारे में क्लियर करना चाहता हूँ बात, कि हराम और हलाल, ये मैं इस पर बड़ा रिजिड हूँ। आप कहते हैं ना आप रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं, मैं कई चीजों में रिजिड हूँ। हलाल और हराम, ये लफ्ज या अल्लाह इस्तेमाल कर सकता है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते हैं, हम उनके बताए हुए हलाल हराम को बयान करेंगे, बाकी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है हम कहेंगे यार हमारे ख्याल में ये भी उस तरह की चीज है, इसलिए कि हम पैगंबर नहीं है, हम पर वही नहीं आती।
5: हकीकत भी ये डॉक्टर
6: ऐसा ही है,
5: अल्लाह की तरफ से आना चाहिए,
6: इसी तरह से हम्बल होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। खुदा के बंदो, तुम लफ्ज हराम इस्तेमाल कर रहे हो, हालांकि ये तुम्हारी राय है, और ये हमारे यहाँ आप ये देखें इतने आम लोग हैं, ये हराम हराम हराम, भाई फॉर गॉड सेक यार, जरा थोड़ा सा ठंडे हो जाओ और आराम से बात करो। सो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जो है हराम, ये तो नहीं है सिगरेट बाज़ लोगों के नज़दीक, लेकिन यार ये भी तो नहीं है ना कि कोई हलाल है, कोई अच्छी चीज़ है, तो वो फिर उसको हराम के करीब ले जाते हैं। वो बाउंड्री तो क्रॉस नहीं की, ये तो आप नहीं कह सकते कि यार तू सिगरेट पी रहा है, तू हराम काम कर रहा है, ऐसे जैसे शराब पी रहा है, ये तो नहीं कह सकते ना। तो इसके लिए फिर एक इस्तलाह आ गई मकरूह तंजीही। अच्छा मैं बात को ख़त्म करने के लिए मैं लेफ्ट साइड भी चला जाता हूँ, मेरी वो लेफ्ट बनती है, पता नहीं आपकी राइट बनती हो। ये जायज़ है मुबाह और उधर है फ़र्ज़, दरमियान में है वो जो मैंने पहले गलती से लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, मंदूब पसंदीदा, यू नो मुस्तहब है, बिल्कुल ठीक है। वो क्या है, आप करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है। फर्ज करेंगे सवाब है, नहीं करेंगे तो गुनाह है। ये जनाब पिक्चर कंप्लीट हो गई।
5: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापसी पे सिलसिला का आगाज वहीं से करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहे।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। UCP राउंड अप के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद
1: और मैं हूं तहजीन अली। सबसे पहले हेडलाइंस।
0: FMMC के तुलबा का रेडियो पाकिस्तान लाहौर का मुतालियाती दौरा, नशरियाती अमूर पर अमली आगाही।
1: कौंसिल जनरल तुर्किया का फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज का दौरा, तालीमी और सकाफती रवाबित के फरोग पर गुफ्तगू।
0: फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेरे एहतमाम दूसरे बैन अल-अक़वामी सिंपोजियम और स्टेक होल्डर डायलॉग का इनेकाद।
1: डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज के तलबा का बनीस का मुतालियाती दौरा, फूड इंडस्ट्री के अमली पहलुओं पर तलबा की तरबियत।
0: MA रऊफ इनोवेशन स्टार्टअप एक्सपो 2026 में FMMC की नुमाया कामयाबी, OSAI प्रोजेक्ट ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली।
1: UCP में 11वें सालाना स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद, फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस जनरल ट्रॉफी की हकदार करार।
0: और UCP की फुटबॉल टीम की नुमाया कामयाबी और पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 में रनर अप पोजीशन।
1: और अब खबरें तफसील के साथ।
0: फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के रेडियो प्रोडक्शन कोर्स के तुलबा ने रेडियो पाकिस्तान लाहौर स्टेशन का मुतालियाती दौरा किया। इस दौरे की निगरानी डॉक्टर हिना अदीब ने की, जबकि इसका मकसद तुलबा को नशरियाती मीडिया के अमली तरीक़ेकार से आगाह करना था। रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टेशन डायरेक्टर डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा ने वफ्त का खैर मकदम किया, जबकि सीनियर प्रोड्यूसर जुबैर बशीर ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के ऑपरेशनल निज़ाम, प्रोग्रामिंग और नशरियाती अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। दौरे के दौरान तुलबा ने स्टेशन डायरेक्टर के साथ एक मालूमाती नशिस्त में भी शिरकत की, जहां उन्हें रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के मुख्तलिफ पहलुओं, पेशावराना जिम्मेदारियों और मीडिया इंडस्ट्री के अमली तकाजों के बारे में आगाह किया गया। ये मुतालियाती दौरा तुलबा के लिए एक मुफीद तालीमी और पेशावराना तजुर्बा साबित हुआ, जिसने उन्हें क्लासरूम में हासिल किए गए इल्म को अमली माहौल में समझने का मौका फराहम किया।
1: फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज ने जमहूरिया तुर्किया के कौंसल जनरल जनाब मेहमत एमन सेमिक की मेजबानी की। इस दौरे का मकसद पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तालीमी तआवुन, सकाफती तबादले और बैन अल-अक़वामी रवाबत को मजीद फरोग देना था। नशिस्त के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया, जबकि मुस्तकबिल में तालीमी शराकत दारी और बाहमी तआवुन के नए मौके पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर फैकल्टी मेंबरान और तुलबा ने कौंसल जनरल के साथ इल्मी और फिक्री गुफ्तगू में हिस्सा लिया, जिसके जरिए उन्हें आलमी तनाजर, बैनुल सकाफती रवाबित और बैनुल अक्वामी तावन के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने का मौका मिला।
0: यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेरे एहतमाम दूसरे बैनुल अक्वामी सिंपोजियम और स्टेक होल्डर डायलॉग का इनेकाद किया गया, जिसमें मुहक्किकीन, माहिरीन सेहत, प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री से वाबस्ता नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस सिंपोजियम में प्रिसिजन मेडिसिन और हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल से मुतल्लिक मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगू की गई। मुकर्ररीन ने सेहत के शोबे में सामने आने वाले नए रुझानात, इनोवेटिव रिसर्च और जदीद साइंसी पेशरफ पर रोशनी डाली, जो मुस्तकबिल के तिबी निज़ाम को मुतासर कर रही हैं। शुरुका ने इस नशिस्त को इल्मी और तहकीकी तबादले के लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म करार दिया, जहां मुख्तलिफ शोबाजात के माहिरीन ने बाहमी तआवुन और मुस्तकबिल की तहकीक के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक इस नौयत की सरगर्मियां तहकीक, जिद्दत और इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान रवाबित को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं।
1: यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज के ज़ेरे तमाम तलबा के लिए बनीस का एक मुतालियाती दौरा मुनक्किद किया गया। इस दौरे का मकसद तलबा को फूड इंडस्ट्री के अमली माहौल और जदीद फूड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से रोशनास करवाना था। दौरे के दौरान तुलबा को खुराक की तैयारी, मियार को बरकरार रखने के तरीकाकार और जदीद पैदावारी निज़ाम के मुख्तलिफ मराहल के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गयी। इस मौके पर तुलबा ने अमली मुशाहिदे के जरिए अपने नजरियाती इल्म को हकीकी सनती माहौल से जोड़ने का तजुर्बा हासिल किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक इस नौयत की सरगर्मियाँ तुलबा की पेशावराना समझ बूझ में इजाफे और फूड इंडस्ट्री के अमली तकाजों को बेहतर अंदाज में जानने में मुआविन साबित होती हैं।
0: MA रऊफ इनोवेशन स्टार्टअप एक्सपो 2026 में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन ने मुल्क भर की 15 जामियात के दरमियान नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तीसरी पोजीशन हासिल की। 6 मई 2026 को होने वाले इस मुकाबले में 400 से ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज पेश किए गए, जहां FMMC के तालबात अक्सा इमरान और रुबा शफीक पर मुश्तमिल टीम ने अपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट ओसाई के जरिए 25,000 रुपए नकद इनाम अपने नाम किया। इस प्रोजेक्ट की निगरानी डॉक्टर सदफ जाहरा ने की, जबकि डॉक्टर सलीम अख्तर मगराना ने बतौर कोऑर्डिनेटर टीम की रहनुमाई की। तकरीब के दौरान डिप्टी चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर جناب عزیز روف نے فاتح ٹیم کو اعزاز سے نوازا. اس موقع پر ایف ایم ایم سی کے دیگر طلباء نے بھی اپنی تخلیقی اور تحقیقی منصوبوں کی نمائش کی جو طلباء کی صلاحیتوں اور ادارے کے علمی و فنی معیار کی عکاسی کرتے ہیں.
1: یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے سپورٹس کلب کے زیر اہتمام 11ویں سالانہ سپورٹس مقابلوں کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف شعبہ جات کے طلباء نے شرکت کی. سپورٹس میلے میں مرد و خواتین کیٹیگریز کے تحت 11 مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے. تقریب میں پروڈکٹر یو سی پی ڈاکٹر حماد نوید اور بین الاقوامی کرکٹر محمد فائق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مقابلوں کے اختتام پر فیکلٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹر سائنس نے سب سے زیادہ پوائنٹس حاصل کرتے ہوئے مجموعی جنرل ٹرافی اپنے نام کی. اسی ایونٹ کے دوران فیکلٹی آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن کے کھلاڑیوں نے بھی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور مجموعی طور پر تیسری پوزیشن حاصل کی. طلبہ کی اس کامیابی کو ان کی محنت، ٹیم ورک اور فیکلٹی کی موثر سرپرستی کا نتیجہ قرار دیا گیا. یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق اس نوعیت کی سرگرمیاں طلبہ میں کھیلوں کے فروغ، ٹیم اسپرٹ اور صحت مند مقابلے کے رجحان کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں.
0: یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے یونیورسٹی آف سرگودا کے زیر اہتمام منعقدہ آل پاکستان انٹر یونیورسٹی فٹ بال چیمپئن شپ 2025-26 میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری پوزیشن حاصل کر لی. ٹورنامنٹ کے دوران یو سی پی کی فٹ بال ٹیم نے غیر معمولی ٹیم ورک، عزم اور بہترین سپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کیا. ملک بھر کی مختلف جامعات کے مابین ہونے والے مقابلوں میں ٹیم نے اپنی مہارت اور کھیل کے اعلیٰ معیار سے نمایاں مقام حاصل کیا. یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق یہ کامیابی طلبہ کی مسلسل محنت، کوچنگ اسٹاف کی رہنمائی اور یو سی پی میں فروغ پانے والے مضبوط سپورٹس کلچر کی عکاس ہے. یہ اعزاز اس بات کا مظہر ہے کہ یو سی پی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں اور ہم نصابی میدان میں بھی طلبہ کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کے بھرپور مواقع فراہم کر رہی ہے.
1: اب تک کے لیے اتنا ہی،
0: ہمیں دیجیے اجازت اور سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
2: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya.
3: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
4: مسلمانی کے دونت رمز دین رو نسایت پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو اف ام 92.6 است. بشنوید جهان یو سی پی.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Ladies and gentlemen, we are live now.
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین رو، نساید پیش غیر الله جبین رو. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
3: एक नई पहचान, एक नई लगन।
4: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
4: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
4: जब मिलती है लगन,
3: मेहनत,
4: कामयाबी और खुलूस,
3: तो बनती है
4: UCP की दुनिया।
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
4: सुनते रहिए।
5: السلام علیکم سامعین، ایف ایم ریڈیو 92.6 یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے ایف ایم ریڈیو سے آپ سب کو احسان احمد کا سلام۔ ایف او ایل کے ہفتہ وار پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد فاروق صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ آج ایک عام انسان کے لیے کس طرح سے ضروری ہے کہ وہ قانون کو سمجھے۔ تعارف کراتا چلوں زاہد صاحب کا، تو زاہد صاحب گزشتہ 5 سالوں سے قانون کی تعلیم حاصل کیے جا رہے ہیں اور لا موڈ کے اندر ایک نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، انٹرنیشنل لیول پر بھی تعلیمی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ فی الوقت شعبۂ تدریس سے تعلق رکھتے زاہد صاحب انٹرنیشنل سکولز میں قانون کی تعلیم دے رہے ہیں، تو آج ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے ایک عام انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون کو سمجھے۔
6: جی، تھینک یو سو مچ احسان بھائی، تھینک یو سو مچ فار دا کائنڈ انٹروڈکشن۔ آئی ووڈ لو ٹو آنسر آل یور کوشچنز۔ آئی ووڈ لائک کہ آپ پہلے کوشچن سے سٹارٹ کریں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلو،
5: پہلا میرا سوال یہ ہوگا کہ آپ ایک عام انسان کو کیا تجویز پیش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے قانون کو سمجھے اور اس پر عمل درآمد کرے۔
6: اس سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے آئی تھنک پہلے ہمیں یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے تھا کہ لا بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ جو ہماری لیگل اسٹڈیز ہیں اس کے اندر یہ ایک کافی ڈیبیٹیبل کوشچن ہے کہ لا بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ تو ڈفرینٹ ویسے تو ہمارے آتھرز ہیں، اسکالرز ہیں، اس کو ہر کوئی اپنی ورڈنگ میں اس کو ڈیفائن کرتا ہے، لیکن ایک جو ہمارے پاس ایک ویل اسٹرکچرڈ فی الحال کے لیے جو ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جو کہ سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہمیشہ اسٹیٹ بناتی ہے۔ تو ان رولز کو جاننے کے لیے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے پاکستان کے لاء کا تعلق ہے، تو پاکستان کے اندر جتنے بھی لاز بنتے ہیں وہ ہمیشہ ہی نیشنل اسمبلی پہلے پاس کرتی ہے، اس کے بعد سینٹ پاس کرتی ہے، یا پھر اگر سینٹ سے اوریجنیٹ ہو رہے ہوں تو پھر وہ بعد میں نیشنل اسمبلی اسے پاس کرتی ہے، بعد میں ایسنٹ کے لیے جاتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس۔ پریزیڈنٹ جیسے ہی وہ ایسنٹ دے دیتا ہے تو اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اٹ بیکمز اے لا۔ تو اس لاء کو یہ بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو بھی لاء بنایا جائے گا اس کو آفیشیل گزٹ کے اندر پبلش کیا جائے گا۔ سو بیسیکلی جو آفیشیل گورنمنٹ گزٹس ہیں، دوز آر دا بیسیکلی سورسز آف ایوری لا۔ تو جتنے بھی لاز ہوتے ہیں وہ پہلے گزٹ کے اندر پبلش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ ہے، آپ وہاں پر بھی جائیں تو آپ کو جتنے لیٹسٹ لاز آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ اور بھی سورسز ہیں، جیسے پاکستان کوڈ ہو گیا، اگر پنجاب کے لاز آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے پنجاب کوڈ ہے، تو آپ اس ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو کافی اچھے اور جو آپ چاہ رہے ہیں، جس لاء کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کو مل جائیں گے۔
5: جی صاحب صاحب، بہت شکریہ۔ آج اے آئی کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس، تو ہمارے لیے تو بہت آسانی ہو گئی ہے کہ ہم قانون کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں قانون کی تعلیم کو حاصل کر لینا چاہیے؟
6: Exactly. آج کل سوشل میڈیا ایک بہت ہی اچھا ٹول ہے جس کے تھرو لا تو ایک فیلڈ ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی فیلڈ رہ ہی نہیں گئی جس کو آپ سیکھ نہیں سکتے۔ अब जैसे आपने एग्जांपल दी एआई की, एआई एक बेस्ट टूल है आजकल के ज़माने में जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। आपने सिर्फ उसे एक प्रॉम्प्ट देना होता है जिसके थ्रू जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होता है वो आपको उसी वक्त जनरेट करके दे देता है। तो इसी तरह आप लॉ भी एआई के थ्रू सीख सकते हैं, लेकिन और जैसे कहा जाता है कि अक्सर हमारा वैसे दीन के लिए एग्जांपल दी जाती है कि अगर आप कुरान सीखना चाहते हैं तो किसी न किसी उस्ताद के अंडर, उनकी सुपरविजन के अंदर सीखें। तो आपको एग्जैक्टली लॉ शायद सही तरह से समझ ना आए इंडिपेंडेंटली खुद से पढ़ने से एआई के थ्रू, लेकिन आपको एक क्रक्स एक आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि लॉ एक्चुअली है।
5: यानी सर एआई आज बतौर एक उस्ताद भी किरदार अदा कर रहा है हमारे मुआशरे में।
6: एग्जैक्टली तो बेसिकली ये एक जो पॉइंट है दैट इज़ डिबेटेबल कि वो उस्ताद के तौर पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मुझे ये लगता है कि आप एआई से सही वाला आंसर लेने के लिए भी आपको उतनी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है
5: जी।
6: अगर आपको पता नहीं है कि आपको आंसर क्या चाहिए तो आप वो आंसर ले ही नहीं सकते, मुझे ये लगता है। अगर मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अगर मुझे किसी पॉइंट के ऊपर कोई असिस्टेंस चाहिए तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि डिफरेंट आंसर आ रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा हो रहा होता है कि उस पॉइंट के ऊपर जो डिफरेंट अदर ज्यूरिसडिक्शन होती हैं उनके लॉज एआई प्रोड्यूस करके दे देता है मुझे। तो इसके लिए ऐसा होता है कि आपको खुद से पहले नॉलेज होना चाहिए कि पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल आप अगर रिसर्च कर रहे हैं कि इसमें मुझे फलां लॉ चाहिए या फलां इस पॉइंट के ऊपर इंटरप्रिटेशन चाहिए या रेलिवेंट जजमेंट्स एटसेट्रा चाहिए, आल दो ये जजमेंट्स वगैरह की एक्सेस नहीं होती। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, खुद को नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर कौन से लॉज लागू हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अगर एआई आपको कोई भी आंसर दे देगा आपने उसको मान लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो इंडियन लॉज हैं वो आपको वो प्रोड्यूस करके दे देता है कि ये देखें ये आपका आंसर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत भी होते हैं।
5: अच्छा सर ये बताइएगा कि एक आम इंसान जब कोई जुर्म कर लेता है, आया हम में एक अशरफुल मखलूकात ज़रूर हैं लेकिन कहीं जुर्म की कहीं गुंजाइश तो हमारे अंदर मौजूद है, तो क्या समझते हैं आप कि एक जब इंसान जुर्म कर ले तो वो इतना परेशान पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर किस तरह से वो परेशान हो जाता है और उसको क्या अपनी एक लाहे अमल अपनाना चाहिए कि वो अपने आप को उससे निजात दे ले या अपनी वो सज़ा को मुकम्मल तरीके से कर ले? क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी जुर्म हो जाए तो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में रहते हैं और वकला तो फिर हैं जहाँ पर बहुत अच्छे आप जैसे भी हैं तो वहाँ पर कुछ हमारे करिंदे भी मौजूद हैं जो बस लपेटने लपेटने में रहते हैं कि बस क्लाइंट हमारा आए तो पकड़ें उसको और उससे पैसे जोड़ें। तो सर ऐसे में एक आम इंसान के लिए क्या रहनुमाई आपकी होगी हमारे लिए?
6: अच्छा तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट करना चाहूँगा कि जब जुर्म हो जाता है तो इंसान परेशान होता है। तो मैं इसके लिए पहले आपको बताना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा, चूँकि आप भी एक माशाल्लाह से इंटेलेक्चुअल हैं और लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको भी ज़रूर आइडिया होगा कि ये जो क्राइम बनाए जाते हैं बेसिकली सोसाइटी के अंदर डेटरेंस कॉज करने के लिए बनाए जाते हैं कि अगर एक डिलिंक्वेंट बिहेवियर अगर एक बंदा शो कर रहा है तो उसको कर्टेल करने के लिए सर्टेन क्राइम्स बनाए जाते हैं ताकि उस बंदे के अंदर एक परेशानी इंड्यूस की जाए ताकि एक तो वो उसके लिए सबक हो और उसके साथ साथ जो बाकी मेंबर्स हैं ऑफ द सोसाइटी उनके लिए भी एक सबक होना चाहिए ताकि वो ये वाला एक्शन कमिट ना करें। सो बेसिकली ये एक पर्पज़ होता है क्राइम का, काइंड ऑफ वैसे तो और भी होते हैं लेकिन ये उनमें से एक है। लेकिन जहाँ तक आपने एक लीगल सिस्टम की बात की कि लीगल सिस्टम के अंदर इतने लैक्यूनस हैं जिनकी वजह से जो आम आदमी होता है वो सफ़र करता है।
5: जी बिल्कुल सर।
6: तो उसके लिए मुझे ये लगता है कि आपको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि एक अच्छे से अच्छे लॉयर के पास जाना चाहिए जो आपको एक प्रॉपरली गाइडेंस प्रोवाइड कर सके।
5: जी सर।
6: लेकिन जहाँ तक है कि आपको सफ़र करना पड़ता है थ्रू द लीगल सिस्टम, तो हमारा जो लीगल सिस्टम है पाकिस्तान का वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है कि अदालतें अगर काम करना चाह रही हों तो वकील काम नहीं करना दे रहे होते। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि दूसरी पार्टी चाह रही होती है कि इसको लिंगर ऑन किया जाए ताकि उनका जो राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए फॉर द टाइम बीइंग।
5: जी
6: तो ऐसे ही चल रहा है
5: सर। आपका कहना है कि कभी जब अदालतें काम करने के मूड में हैं तो वकला बरादरी हमारा साथ नहीं देती, अगर वकला बरादरी साथ दे रही है तो अदालतें साथ नहीं देती।
6: एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप देखें क्लोजली अगर इस बात को जाके देखें तो बेसिकली पीछे वकला के पीछे पार्टीज होती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया हुआ तो जितना टाइम आपको मिलेगा वहाँ पर रहने के लिए आप तो उतना ही चाहोगे कि इस केस को इतना लिंगर ऑन किया जाए ताकि जितना देर तक फैसला आएगा उतनी देर तक मैं यहाँ पर रह सकता
5: जी, जी।
6: तो बेसिकली पीछे पार्टीज होती हैं जो ये चाह रही होती हैं, लेकिन यही होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर काफी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है।
5: जी जाहिर साहब,
6: जब तक ये इम्प्रूवमेंट नहीं आती तो जो आम आदमी है वो सफर जरूर करता रहेगा।
5: जी जाहिर साहब, बहुत शुक्रिया। अभी तक के लिए सामेईन के लिए बहुत मुफीद रही होगी आपकी गुफ्तगू। अभी हम जानेंगे बकिया ब्रेक के बाद कि एक आम इंसान पर अगर FIR हो जाए तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए और किस तरह से अपने वकला को या अपने वकील को करना चाहिए।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर है आपके साथ यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6 फैकल्टी ऑफ लॉ के प्रोग्राम में। जाहिर साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं, तो उनसे दोबारा से एक सवाल और उनसे रहनुमाई ज़रूर तलब करेंगे कि हमारे पास कानून की तालीम के ऊपर ज़ोर इस कदर ज़्यादा नहीं दिया जाता जिस तरह से हमारी बकिया तालीम पर ज़ोर दिया जाता है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि आया हमारे स्कूलिंग में या हमारे कॉलेज की जो स्टडी है उसके अंदर भी कानून की तालीम को शामिल कर देना चाहिए ताकि आगाही सर ज़रूर रहे ताकि
2: तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा ओपिनियनेटेड क्वेश्चन है और मेरा आंसर भी ओपिनियन बेस्ड ही होना चाहिए। तो मैं एक अपनी ओपिनियन देना चाहूँगा इसके अंदर। तो जो हमारा पाकिस्तान है, ये एक डॉक्यूमेंट के ऊपर चलाया जा रहा है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका रोल क्या है? ये बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू जितने भी ऑर्गन ऑफ द स्टेट हैं वो काम कर रहे हैं। कि पुलिस अगर काम कर रही है तो उसे किस कैसे पावर्स मिली है, इसी तरह प्रेसिडेंट को वो रोल कहाँ से मिला है, प्राइम मिनिस्टर को कहाँ से मिला है, पार्लियामेंट कहाँ से आई है, लोगों के क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज क्या हैं, लॉ बनना है तो कैसे बनाया जाएगा,
1: बिल्कुल सर,
2: एटसेट्रा। अब ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं।
1: बिल्कुल।
2: अब ये भी लॉ है कि इसके खिलाफ कोई और लॉ नहीं बनाया जा सकता। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, ठीक है, मींस कि उसके उसको पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत थी। इसको ग्राउंड नॉर्म लॉ भी कहा जाता है, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, इसके खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। जो पार्लियामेंट अदरवाइज लॉ बनाती है ये सिंपल लेजिस्लेशन के थ्रू बनाती है। अब उसके लिए वही रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं होती जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ज़रूरी थी। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत थी, लेकिन जो सिंपल लेजिस्लेशन होती है उसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। मींस कि अगर 342 मेंबर्स हैं तो आपको 171 और 172 मेंबर्स चाहिए होंगे एक लॉ बनाने के लिए। और वैसे भी ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि 172 होना चाहिए। वर्ड यूज़ हुआ है कोरम पूरा होना चाहिए और उसके साथ साथ मेजॉरिटी उस लॉ के हक के अंदर वोट दे रही हो। फॉर इंस्टेंस अगर टोटल मेंबर हैं 342 तो ये ज़रूर मैटर ये करेगा कि उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर कितने अवेलेबल हैं। अगर फॉर इंस्टेंस 200 बंदा अवेलेबल है, 200 MNAs अवेलेबल हैं, तो उसके लिए उस एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लॉ बनाने के लिए आपको 101 बंदा चाहिए होगा। तो ये सिंपल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा, सिंपल लॉ जिसे हम कहते हैं
1: जी।
2: लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट इसे कहा जाता है। तो उसको बनाने के लिए या उसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी
1: जी सर।
2: सो बेसिकली ये जो आपके वैल्यूज़ हैं वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक जो आम बंदा है उसको उसकी स्कूलिंग के अंदर ही ये सारे उसके जो राइट्स हैं, उसको वो किस स्टेट के अंदर रह रहा है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, जैसे डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, ये सारा कुछ उसे पता होना चाहिए ताकि उसे पता हो कि वो कहाँ पर रह रहा है। लेकिन जो एक मेजर लॉ की स्टडी होती है, जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, अब मुझे नहीं लगता कि उसको पढ़ाने की ज़रूरत है, बिकॉज बाकी भी और काफ़ी फील्ड हैं जिनको आपको जानने का राइट तो ज़रूर है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एक्सेट्रा, लेकिन वो हर चीज़ आपको जानने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अब जो MBBS है, डॉक्टर है, फिजिशियन है या फिर साइंटिस्ट हैं, उनकी भी पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं सकता बिकॉज हर किसी के सरकमस्टांसिस वगैरह डिफरेंट होते हैं और हर कोई डिफरेंट फील्ड परसू कर रहा होता है। तो मुझे लगता है जो बेसिक नॉलेज है वो ज़रूर देना चाहिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की तालीम है वो ज़रूर देनी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि आपके फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, पाकिस्तान कौन से लॉज के ऊपर काम कर रहा है, आपके ऑर्गन कौन कौन से हैं, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए
1: जी। बिल्कुल सर। अच्छा सर, कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर हो ही रही है तो इसकी बुनियादों की बात कर लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद क्या रही और किस तरह से उस बुनियाद की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी बुनियाद इस्लामिक प्रोविजंस हैं, कि कोई भी हमारी आने वाली प्रोविजन कोई भी कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं जाएगा। सर अभी बहुत सारे कानून इस तरह के मौजूद हैं जिसके अंदर इस्लामी सजाएं या इस्लामी कानून उस तरह से राइजुल अमल नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था।
2: अच्छा तो आप बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जितने भी लॉज बनते हैं तो अगर इन केस कोई डिस्प्यूट वगैरह हो कि ये लॉज अन इस्लामिक हैं तो हमारे पास दो फोरम अवेलेबल होते हैं। पहला है काउंसिल ऑफ इस्लामिक इंटरेस्ट, वो एक काउंसिल है जिसको पार्लियामेंट भेज सकती है, प्रेसिडेंट भेज सकता है कि आप बता दें, आप हमें एडवाइज कर दें कि क्या ये लॉ इस्लामिक है कि नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट शुरू हो जाती है कि जी ये जो लॉ आप बनाना चाह रहे हैं ये तो है ही अन इस्लामिक, तो उस सिचुएशन के अंदर स्पीकर भेज सकता है या पार्लियामेंट रेफर कर सकती है टू द काउंसिल ऑफ इस्लामिक इंटरेस्ट, वो बताएंगी कि ये लॉ इस्लामिक है या नहीं है। जब तक उनकी कंसेंट आएगी, उनकी कंसेंट आने के बाद या उन्होंने जब ओपिनियन देनी है उसके बाद ही लॉ बनाया जाता है। उसके अलावा उधर से जो भी आए, वैसे मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि उनका जो भी फैसला हो या वो जो भी मशवरा दें वो बाइंडिंग नहीं होता पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट फिर भी कॉम्पिटेंट होती है कि वो लॉ बना सकती है। लेकिन इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज़ फेडरल शरिया कोर्ट, आप उसके अंदर वो लॉ को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप उधर चैलेंज करते हैं तो आप सेटिसाइड करवा सकते हैं, अगर फेडरल शरिया कोर्ट उसे सेटिसाइड करती है तो इट मीन्स के वो लॉ अब है ही नहीं।
1: जी जाहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमारी सामीन की बड़ी पुरजोर फरमाइश थी कि कानून के बारे में हमारी रहनुमाई की जाए। तो अभी तक के लिए है जो रहनुमाई रही है हमारी कि एक आम इंसान कानून को कैसे समझेगा, किस तरह समझेगा, और FIR जैसा एक बुनियादी अमल जो हमारे आए रोज़ हमें देखने को मिलता है उसकी हमने प्रोसीडिंग्स कैसे करनी है, हमने ये भी आपसे आज के दिन में जाना, और आखिर में आपने कानून की तालीम की अहमियत को ऊपर चांद लगाए, रोशन किया उसको। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी, आपने अपना वक्त दिया हमें आज FM रेडियो 92.6 की बदौलत हमें बहुत सारी रहनुमाई आपके वसीले से मिली।
2: जी थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर टू बी हियर, ऑलवेज देयर फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू सो मच।
1: जी सामीन, बहुत शुक्रिया आपके सुनने का FM 92.6 UCP की दुनिया, फैकल्टी ऑफ लॉ के अगले प्रोग्राम में मिलते हैं आपसे। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।

0: कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: इन सदाए लाहौर, इन सदाए UCPS, लुत्फान गुश बदहीद, FM 92.6 जहाने UCP।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस,

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया
1: कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहीं फिर के सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ।

0: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
1: खबरदार, छूना मना है।
2: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
3: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: ट्वेंटी फोर सेवन ओनली ऑन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP Ki Duniya.
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान FM 92.6.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी।

0: अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, फैकल्टी आर प्रोग्राम के साथ। इस प्रोग्राम के जरिए हम मीडिया एंड फैकल्टी के बारे में जानते हैं, हम डिस्कशन करते हैं एकेडेमिया की, फैकल्टी की, अपॉर्चुनिटीज की, नेटवर्किंग स्किल्स की, मीडिया ट्रेंड्स की, फिल्म मेकिंग की, एड पीआर की, एंटरप्रेन्योरशिप और इस तरह के बहुत सारे अहम मौजूदात पर गुफ्तगू रहती है हमारी। और आज जो हमारी मेहमान है उनको किसी भी तारुफ का वैसे तो मोहताज नहीं, और उसके अलावा वो एक हरदिल अजीज शख्सियत है जिनका नाम लेते मेरे ख्याल से अगर कोई स्टूडेंट है या टीचर है जो भी उनसे बात करता है और जिनका जब भी नाम आता है तो वो नाम में उनकी रिस्पेक्ट लिए बगैर नाम भी नहीं लिया जा सकता। उसके अलावा जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा इशू जो आपको लगता है कोई रिजॉल्व नहीं कर सकता, किसी से डिस्कशन करनी है या किसी से अपनी प्रॉब्लम की सोल्यूशन लेनी है, तो डॉक्टर सदफ ज़ाहरा हैं जिनके पास हम सबसे पहले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम।
3: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: वेलकम टू फैकल्टी आर।
3: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर।
2: अच्छा, आज गुफ्तगू का सिलसिला जो आगाज़ करेंगे वो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आपने मीडिया और मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री ली और इसमें ही PhD की।
3: Yes.
2: तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ कि मुझे मीडिया में कुछ करना है? क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं बच्चे साइंसेस के सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो वहाँ कैसे एक ख्याल आया कि नहीं मुझे मीडिया फील्ड में जाना है?
3: वेल एक्चुअली आई एंटर्ड दिस फील्ड वेरी कोइंसिडेंटली। बाकी लोगों की तरह मेरे पेरेंट्स का भी ये ड्रीम था, लॉन्ग लॉस्ट ड्रीम था, और मेरी लाइफ का भी ये एम था कि मैं जो है वो डॉक्टर बनूंगी। एंड आई ऑप्टेड फॉर प्री मेडिकल बोथ इन माई मेट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसिस की वजह से दोज पर्सन्स हु नो मी पर्सनली दे नो माई मदर डाइड इन वेरी अर्ली एज, दैट्स वाई आई हैड टू स्विच टू दिस फील्ड। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में उस वक्त एडमिशन्स ओपन थे एंड मैथ्स कम्युनिकेशन जो है वो, क्योंकि मुझे बचपन से पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था और मैं न्यूज़पेपर्स बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, मैगजीन्स बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, एंड मैं मीडिया रेगुलरली जो है वो न्यूज़ भी सुनती थी, एंड वहाँ पे जो है वो मैथ्स कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट ओपन था तो मैंने वहाँ पे चूज़ कर लिया। देन आई नो के आई कैन एडजस्ट इन एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट और सिचुएशन, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया एंड आई डिवेल्प माई इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, और डेफिनेटली अभी आपके सामने हूँ मैं।
2: तो जब आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया था तो क्या फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर या कोई ऐसी बात सुनने को मिली थी कि तुमने मीडिया फील्ड में चली गई हो, ये फील्ड लड़कियों के लिए नहीं है, इस फील्ड में क्या करोगी आगे जाके?
3: एक्चुअली इस तरह का तो प्रेशर नहीं था, दो आई बिलोंग टू ब्लोच फैमिली एंड दे आर वेरी कंजर्वेटिव काइंड ऑफ फैमिलीज, लेकिन माई होल फैमिली इज़ माशाल्लाह वेरी प्रोग्रेसिव एंड माई फादर वॉज वेरी मच प्रोग्रेसिव। I had pressure के I was gold medalist throughout my career, educational career. तो मेरे पापा जी को ये लगता था कि मुझे किसी accounting and finance या इस तरह की जो intellectual fields हैं उनमें जाना चाहिए, it can be computer science और मैं वहाँ पर excel कर सकती हूँ, और mass communication में मैं अपना जो talent है वो मैं waste कर रही हूँ। लेकिन then मैंने अपने पापा जी को कहा कि नहीं, जो मैंने चूज़ कर लिया है अब मुझे इसमें इंटरेस्ट डिवेल्प हो गया एंड अब मैं इसको स्विच नहीं करूँगी, एंड देन आई कंटिन्यूड माई स्टडीज इन दिस।
2: यानी वो इजीली मान गए थे?
3: यस यस।
2: तो आज वो बहुत प्राउड होंगे आप पे, बिकॉज जिस तरह से आपने अपने कैरियर को स्टार्ट किया और अभी जिस तरह से कैरियर पे लेके चल रही हैं आप अपनी रिसर्च को एंड अदर अचीवमेंट्स को, वो काबिले तहसीन और काबिले क्या कहते हैं तारीफ है। सो अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि एरिया ऑफ रिसर्च या रिसर्च की बात करें, क्योंकि यूजुअली जब हम रिसर्च की बात करते हैं क्लास में भी तो स्टूडेंट्स बड़ा एकदम से घबरा जाते हैं, बड़ा ये रुखी सी फील्ड लगती है और हर इंसान रिसर्च कर भी नहीं सकता।
3: बिल्कुल ऐसे ही है।
2: तो आपको कैसे रिसर्च में एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ और आपने सोचा कि अब यही मेरी जो है फील्ड है और मैंने इसी में हर तरह से अपने झंडे मनवाने हैं और मैंने लगाने हैं हर तरह?
3: आई वुड से कि आई गॉट लकी. ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे लगता है कि मैं किसी भी सिचुएशन में इजीली जो है वो एडजस्ट हो जाती हूँ. तो व्हेन आई डिड माय बीएस इन मास कम्युनिकेशन, आई डिडंट नो कि मैं आगे एमफिल करूँगी या पीएचडी करूँगी. जैसे ही मेरी बीएस की डिग्री कंप्लीट हुई, तो उस दिन जो है, जिस दिन मुझे डिग्री मिली, उस दिन जो है वो लास्ट डेट थी बीजीयू में एमफिल के एडमिशन की. तो माय फादर उस वक्त जो है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया. उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप जाओ और आप जाके एडमिशन टेस्ट अपना जो है वो फॉर्म वगैरह फिल करो और फिर देखते हैं. क्योंकि मुझे शुरू से ही, जैसे मैंने बताया कि मुझे लर्न करने का बहुत ज़्यादा शौक था, मैं मेडिकल की या कोई भी जो इस तरह की स्टोरीज होती थी, मैं उनकी क्लिपिंग्स जो है वो कट करके अपने पास फाइल्स मेंटेन करती होती थी, अपनी डायरीज मेंटेन करती थी. तो मुझे नई नई चीज़ें लर्न करने का बहुत ज़्यादा शौक था. तो जब मैंने एमफिल में रिसर्च पढ़नी शुरू की, तो मुझे लगा कि रिसर्च बेसिकली ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आप हर रोज़ कोई नई से नई चीज़ लर्न कर रहे होते हो. और बेसिकली उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है कि आप अपने बिल्कुल आसपास की चीज़ें जो है वो उन पे क्वेश्चन कर रहे हो कि अगर ये चीज़ हो रही है तो ये क्यों हो रही है. लेट फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मैं इसके ऊपर जो है वो एनालिसिस स्टार्ट कर दूँ कि ये जो कन्वर्जेशन हो रही है इसमें उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं, या इस तरह की जो चीज़ें हैं ये डेली बेसिस पे जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही होती हैं, जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसको क्वेश्चन करते हैं, तो बेसिकली दिस इज़ रिसर्च. ठीक है. और यस आई नो कि इट इज़ अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, और इनिशियली आपको लगता भी है क्योंकि परसेप्शन डिवेलप हो चुकी हुई है ओवरऑल कि रिसर्च करना बहुत मुश्किल है. लेकिन जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हो तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा बस यही प्रोसेस था एंड इट वाज वेरी इजी. तो फिर आपको जो है वो लगता है कि नहीं, हमें ये भी करना चाहिए, हमें ये भी करना चाहिए, हमें ये भी करना चाहिए. एंड इससे जो है वो बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे कोलीग्स भी हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम. और आप जो है वो उस प्रोसेस से गुजर रही हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब ये आपका प्रोसेस कम्प्लीट होगा तो आप खुद कहेंगे कि दिस वॉज वेरी इजी.
4: मेरे लिए तो मुझे लगता है बहुत ही टफेस्ट प्रोसेस है. इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि रिसर्च करते हुए आपको कैसे आप मेक श्योर करते हो कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं करने जाने वाला हूँ वो बिल्कुल ठीक है, अप टू द मार्क है और मैं इसको कर सकता हूँ. क्योंकि रिसर्च इतना रूखा, इतना ड्राई है. स्टूडेंट्स भी क्लास में जब हम बात कर रहे होते हैं रिसर्च आर्टिकल पढ़ने की, बच्चे कभी इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे होते.
3: बिल्कुल. अच्छा, उसके जो है वो हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो पैटर्न्स पे वर्क करता है. तो व्हेन आई टीच माय स्टूडेंट्स के आपने लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, या आपने थीसिस कैसे लिखना है, या आपने पब्लिकेशंस कैसे करवानी है, तो मैं उनको वो टिप्स देती हूँ जो उनके काम आए. यानी यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग. ठीक है, जो आपके काम की चीज़ें हैं आप उसको रीड करें और रीरीड करें, बार बार रीड करें. आप हम ह्यूमन माइंड वर्क भी इस तरह से करता है कि जब आप फर्स्ट टाइम रीड करें किसी चीज़ को तो जस्ट बिकम फैमिलियर विद द टेक्स्ट. जब आप सेकंड टाइम उसको रीड करेंगे तो आपकी खुद ब खुद सबकॉन्शियस में उसकी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी. प्लस जो आप बात कर रही हैं कि जैसे रिसर्च प्रोसेस है, अभी उसमें भी फ़र्क है ना. अगर आप पब्लिकेशंस की तरफ जाएंगी और अगर आप अपने इंटरेस्ट की वजह से रिसर्च पे काम करना शुरू करेंगी तो मे बी वहाँ पे इतनी लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ना हो. बट इफ़ वी टॉक अबाउट एमफिल एंड देन पीएचडी खास तौर पे, तो वहाँ पे हमें डिफरेंट अप्रूवल्स लेने होते हैं. वी हैव टू वेट कि अब हमें इस चीज़ का अप्रूवल मिलेगा तो हम ये करेंगे. देन इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस जिसकी वजह से आप जो है वो डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं. बट एक्चुअली रिसर्च आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही है, जो अदर सर्कमस्टांसेस हैं जिनको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स या इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कहते हैं, वो आपकी डीमोटिवेशन का जो है वो कॉज बन रहे होते हैं. तो इसलिए आपको लगता है कि
4: आपसे बात करके पता चल रहा है कि रिसर्च आपके दिल के कितने करीब है. चले हमें और हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि एरिया ऑफ रिसर्च आपका क्या है और आपने कैसे सिलेक्ट किया कि मैं इसी एरिया में काम करने वाली हूँ और इसी में एक्सेल करना है.
3: वेल इनिशियली जब मैंने अपना एमफिल का थीसिस किया था तो आई वॉज इन टू इस्लामोफोबिया. आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड. और मेरा जो एमफिल का थीसिस था वो भी वुमेन मुस्लिम को जो है वो किस तरह से अमेरिकन प्रिंट मीडिया में या वर्ल्ड मीडिया जो है वो किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, इसके ऊपर मैंने काम किया. देन जब मैं पीएचडी में आई, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो है वो ट्रेंड्स आपके जो है वो डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, एंड ऑलरेडी इसके ऊपर इन एरियाज पे इतना ज़्यादा काम हो चुका हुआ था. देन आई स्टार्टेड रीडिंग. ठीक है, और मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा और मेरे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रीडिंग के बाद, कोई ऑलमोस्ट 8 to 10 एरियाज पढ़ने उनको लिखने के बाद रिजेक्ट हो के देन आई केम इनटू मीडिया एंड साइकोलॉजी। तो बेसिकली अभी आजकल जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं सोशल मीडिया एंड साइकोलॉजी को लेकर या वेलबींग को लेकर जो है वो मैं अपनी पब्लिकेशंस या स्टूडेंट्स के जो थीसिस हैं वो इस पे काम कर रहे हैं।
4: सो आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है सामईन। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और डिस्कस करते हैं कि मिस्टर जफ़ का रिसर्च एरिया और उसमें इंटरेस्ट और एक अच्छा रिसर्चर कैसे बना जा सकता है।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और आज हमारी सबसे प्यारी और बहुत हर दिल अजीज डॉक्टर सदफ जहरा हमारे साथ, और हम इन सभी बात कर रहे थे प्लेजरिज्म पे। उसके अलावा हम बात कर रहे थे कि रिसर्च और रिसर्चर की क्वालिटीज क्या होती हैं। मैम मुझे ये बताएं कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो सोशल साइंसेज में अभी क्या रिसर्च ट्रेंड्स चल रहे हैं?
2: पब्लिकेशंस, उसमें भी आपके पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जर्नल पब्लिकेशंस कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, देन उसके बाद आप बुक चैप्टर्स जो है वो पब्लिश करवा सकते हैं, देन बुक चैप्टर्स को आप एडिट भी कर सकते हैं, प्लस यू कैन बी अ रिव्यूअर फॉर एनी नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल, जो बेसिकली एक रिसर्चर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
1: अच्छा मैम, इसी से मुझे याद आया कि हमारा जो UCP जर्नल ऑफ मास कम्युनिकेशन है, आप उसकी एडिटर भी हैं।
2: Yes.
1: तो ये इनिशिएटिव कहाँ से आया और कैसे इस इनिशिएटिव में आपने फुल ऑन अपनी एफर्ट्स दी हैं? बिकॉज मैं देखती हूँ आप बहुत मेहनत कर रही होती हैं, इतने सारे रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ना, गो थ्रू करना, रिव्यूअर्स के साथ कनेक्ट करना, सब एडिटर को देखना, बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करना, कैसे कर लेती हैं ये?
2: वेल मरियम, थैंक यू सो मच पहले तो इतनी अप्रिसिएशन के लिए, कि जब आपको अपने काम के लिए इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है,
1: और आपको मोटिवेशन
2: भी मिलती है। थैंक यू सो मच, आपको मोटिवेशन भी मिलती है कि आपने आगे जो है वो इससे अच्छा काम ही करना है। ये जो प्रोसेस है, ये बेसिकली हर डिपार्टमेंट की, हर फैकल्टी की जो है वो नीड ऑफ दी और है राइट नाउ, क्योंकि आप देखें कि जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, देयर वाज अ टाइम जब हमारे नेशनल जर्नल्स और इंटरनेशनल जर्नल्स जो हैं वो आपके लिए बहुत दूर आपको लगते थे, यानी वो ऐसी चीज़ होती थी जिसमें आपको लगता था कि एक जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे टीचर्स जो होते थे वो भी नहीं पब्लिश उस तरह से करवा पाते थे। लेकिन अभी तो आप देखें विद दी इन्वेंशंस जो हमारे पास इनोवेशंस आ चुकी हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हमारे पास ऑनलाइन जर्नल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, प्रिंट में भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो नेशनल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, तो कोई भी एक रिसर्चर जिसको लगता है कि उसने काम किया वो पब्लिश करवा सकता है और करवाना चाहिए। हर डिपार्टमेंट और फैकल्टी में इसकी ज़रूरत इसलिए है कि डेफिनेटली हमारे बहुत सारे एकेडेमिया से रेलिवेंट जो टीचर्स हैं उसमें हमारी प्रमोशन का क्राइटेरिया भी पब्लिकेशन की बेसिस पे होता है, ये तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारी अपनी भी ज़रूरत है। अब वो जो पब्लिकेशन है वो एक प्लेटफॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल, कि आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप आएँ और अपने आर्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे पब्लिश करवाएं। उससे डिपार्टमेंट भी ग्रो करेगा, जो आपका स्कॉलर है, टीचर है, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी और उसकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। हमने जो है वो इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की थी इन जुलाई 2022, एंड देन हमारे बोर्ड्स बने, हमारा एडिटोरियल बोर्ड था, एंड देन उसके बाद जो है वो हमारा फर्स्ट इशू जो है वो पब्लिश हुआ था इन जून 2023, जो कि हमारा फर्स्ट इशू था, और अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जर्नल जो है वो वाई कैटेगरी में रिकॉग्नाइज्ड कर लिया HEC ने, एंड इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट ऑन आवर पार्ट, के मतलब हमारी मेहनत जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उसका इतना फल दिया। एंड अभी जो है वो हमारा जर्नल, उसका जो वॉल्यूम 3 है उसके इशू 1 के लिए हमने कॉल फॉर पेपर्स भी दिया हुआ है, तो इफ़ एनी स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर और रिसर्च स्कॉलर इज़ इंटरेस्टेड, नॉट स्पेसिफिकली इन लाहौर, बल्कि अच्छी बात है जितने भी मीडिया के जहाँ जहाँ पे भी डिपार्टमेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, इवन इंटरनेशनली, वो जो है वो हमें अपने आर्टिकल्स भेज सकते हैं, एंड देन डेफिनेटली उसका पूरा प्रोसेस है।
1: अच्छा मैम, इसका कोई क्राइटेरिया होता है जब आपको आर्टिकल भेजा जाता है, और कोई फ़ी है, कोई क्राइटेरिया है जिसको आप देखती हैं और उसके मुताबिक जो है रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश किया जाता है?
2: वेल, हमारा जो जर्नल है वो क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जो है वो यूनिवर्सिटी बेसिस पे है, तो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट राइट नाउ, हम इसकी कोई पब्लिकेशन फ़ी जो है वो चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया जो है वो क्योंकि HEC से रिकॉग्नाइज्ड, और अगर आपका जर्नल HEC से रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है तब भी उसका एक पूरा प्रोसेस है जो हमें मीट करना होता है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन बाय HEC। उसमें ये होता है कि एक स्कॉलर जो है वो आर्टिकल हमें सबमिट करवाता है, हमारा जर्नल का OGS है, ऑनलाइन पोर्टल है जिसको जिसका लिंक है कि OGS www.ucb.edu.pk वहाँ पे जो है वो सिंपली एक ऑथर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं और उसके बाद अपना आर्टिकल और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, एब्स्ट्रैक्ट हैं, की वर्ड्स हैं, जो कोऑथर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है, वो सारा कुछ करके वो सबमिट करवाता है। फिर उसके बाद जो है वो एडिटोरियल बोर्ड जो है वो उसका इनिशियली रिव्यू करते हैं। इनिशियल रिव्यू में हम देखते हैं कि वो जो आर्टिकल सबमिट हुआ है वो हमारे स्कोप के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी जो हमने अपने कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए हैं उनको मीट कर रहा है, उसकी फॉर्मेटिंग और जो क्राइटेरिया हमने दिया हुआ है वो उसको मीट कर रहा है या नहीं, फॉल कर रहा है उसके अंदर। अगर तो वो उसके अंदर फॉल कर रहा है और हम अप्रूव करते हैं कि यस इसके अंदर जो है वो क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तो फिर हम उसको फर्दर रिव्यू प्रोसेस में डालते हैं। अब HEC के अकॉर्डिंग जो है वो हम ब्लाइंड पीयर रिव्यू प्रोसेस जो है वो मेक श्योर करते हैं, जिसमें ऑथर भी एनोनिमस होता है और रिव्यूअर्स भी एनोनिमस होते हैं, यानी बोथ साइड पे दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इफ़ देयर आर एनी मेजर रिविजन्स तो हम उसको वहीं पे ही रिविजन्स के लिए भेज देते हैं। देन जब उसमें रिविजन्स हो जाती हैं, अगर हमें रिव्यूअर ने कहा है, तो हम उसको रिव्यू के लिए जो है वो भेजते हैं। लेकिन अगर माइनर रिविजन्स हैं तो वो भी हम ऑथर से करवा के फिर देखते हैं कि उसके अंदर वो रिविजन्स जो है वो मेक श्योर हुई हैं या नहीं, एंड देन फिर हम डिसाइड करते हैं कि अगर ये पूरा प्रोसेस हो गया है एंड नाउ इट इज़ एक्सेप्टेबल, तो फिर हम इसको फर्दर एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड देन उसकी कॉपी एडिटिंग एंड प्रोडक्शन, उसमें जो है वो 1 से 2 माह लगते हैं, देन हम उसको एक्चुअली पब्लिश करते हैं बोथ ऑनलाइन एंड इन प्रिंट वर्जन।
1: और मैम ये जो पब्लिकेशन हो रही है ये फैकल्टी में से जो फैकल्टी पर्सन हैं फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन की, ये भी पब्लिकेशन करवा सकते हैं या इनके अलावा कोई भी पब्लिकेशन करवा सकता है?
2: जो एडिटोरियल बोर्ड है आपके जर्नल का, जैसे लेट्स सपोज उसमें हम 6 मेंबर्स हैं, तो हम इसके अंदर जो है वो पब्लिश नहीं करवा सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर के जो एडिटोरियल बोर्ड है वो अपनी पब्लिकेशन उसमें ना कराए, और क्योंकि अपना जर्नल है वो खुद ही देख रहे हैं और खुद ही सारा प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसको ट्रांसपेरेंट रखना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू HEC आपकी जो 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपके अपने इंस्टीट्यूट या अपने डिपार्टमेंट की होनी चाहिए। तो हम ये करते हैं कि इफ़ देयर आर 5 आर्टिकल्स तो 4 हमारे जो है वो आउट ऑफ इंस्टीट्यूट होते हैं और 1 आर्टिकल हमारे अपने स्कॉलर्स में से होता है। एंड देन उसी तरह अगर 10 आर्टिकल्स हैं तो 8 बाहर से होंगे और 2 जो है वो हमारे अपने होंगे।
1: और मैम हर मेथडोलॉजी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिक्स मेथड मेथडोलॉजी हर तरह का आर्टिकल इसमें होता है?
2: यस, बट उसका जो एनालिसिस पार्ट है बोथ फॉर क्वालिटेटिव एंड बोथ फॉर क्वांटिटेटिव वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने ज़रूरी हैं।
1: अच्छा, यानी इसकी एक सर्टेन तरह से इम्प्लीमेंटेशन यही है कि आपका रिव्यू जो होता है वो इस बेसिस पे होता है कि आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा हो।
2: yes.
1: और उसमें प्लेजराइज्ड काम ना हो।
2: yes.
1: और डेटा जो है जो डेटा कलेक्शन हुई है या डेटा का एनालिसिस है वो अप टू द मार्क हो।
2: yes,
1: ऐसे ही है जैसे बाकी जर्नल्स के लिए आप भेज होते हैं, लेकिन इसमें कोई फी नहीं है।
2: yes,
1: इसमें इफ यू वॉन्ट टू पब्लिश तो आपका विदाउट फी जो है पब्लिश हो जाता है। तो ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तमाम मीडिया और मास कम्युनिकेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए कि वो अपनी पब्लिकेशंस करवाएं और एटलीस्ट वो इस चीज़ को नॉलेज भी रखते होंगे कि हमारा वाई कैटेगरी का रिकग्नाइज जर्नल है, तो इसमें पब्लिकेशन करवाने से उनकी रिसर्च का जो एक ग्राफ है वो ऊपर जाएगा।
2: यस, बिल्कुल ऊपर जाएगा। फॉर इट इज़ गुड फॉर बिगनर्स एंड जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी है, क्योंकि हमने ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्स और W में कराने होते हैं, दो देयर आर क्राइटेरियाज जो हमारी प्रमोशंस के लिए या अप्रेजल्स के लिए ज़रूरी हैं, बट आपने सर्टन क्वान्टिटी भी मीट करनी होती है तो आप वाई में भी करा सकते हैं। और बिगनर्स के लिए तो वो इसलिए अच्छा है क्योंकि आप अभी राइटिंग सीख रहे हैं, तो आप जो है वो एकेडमिक जर्नल्स में एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स आपको अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे जो है वो पब्लिश करवाएं।
1: और मैम ये प्रोसेस कितना थका देने वाला होता है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं, मैं देखती हूँ यूजुअली आपका ऑफिस मेरे करीब ही है तो मैं देखती हूँ कि आप सारा वक्त सिर्फ काम कर रही होती हैं, जब से आती हैं तब से जब तक मैं जाती नहीं हूँ, शायद आपके जाने तक आप सिर्फ लैपटॉप पे चीज़ों को रिव्यू कर रही होती हैं। मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, टीचर्स भी आ रहे हैं, अब ये मीटिंग है, अब वो सेमिनार है, वो वर्कशॉप है, कैसे कर लेती हैं मैनेज, कैसे ये प्रोसेस थकाने वाला नहीं होता?
2: हाँ जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन जो है वो मशीनरी भी थक जाती है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो इंसान भी थकना शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने फिर वही मैं कहूँगी कि इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और आपको जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलती रहती है। जैसे अभी आपकी बात से ही मैं मोटिवेशन ले रही हूँ कि इफ़ आई हैव बिकम सर्टेन काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर माई स्टूडेंट्स एंड फॉर माई कोलीग्स, तो ये भी मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि मैं और ज़्यादा अच्छा काम करूँ और मैं अपने आप को इस फील्ड में जो है वो और एक्सपर्ट बनाऊं, ताकि मुझे देखकर मेरे स्टूडेंट्स भी एज एन एग्जांपल मुझे सेट करें और वो इस फील्ड में आएं और आगे अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं।
1: वैसे स्टूडेंट्स कर रहे हैं और वो आके बताते हैं कि डॉक्टर सदफ ज़ारा से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये जो प्रोसेस है आपका रिसर्च का, ये प्रोसेस जो एज एन एडिटर है, ये कितना डिफरेंट है एक दूसरे से एज ए रिसर्चर और एज ए एडिटर काम करना?
2: जब मैं खुद रिसर्चर थी तो मैं खुद थक जाती थी, क्योंकि उस वक्त जो इंटरनेशनल जर्नल्स, अभी भी जो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे जर्नल्स हैं, उनका जो पब्लिकेशन प्रोसेस है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 1.5 and 2 years टू पब्लिश, जिसमें आपको मल्टीपल रिविजन्स जो है वो करनी पड़ती हैं, एंड देन इट इज़ नॉट गारंटीड कि वो आपको एक्सेप्ट करेंगे आपका पेपर और आपका पेपर पब्लिश करेंगे। लेकिन जब मैं खुद इस प्रोसेस में पार्ट बनी हूँ, जब हमारा जर्नल स्टार्ट हुआ था तो आई वाज मैनेजिंग एडिटर, और क्योंकि मैं चीज़ें मैनेज कर रही थी और बेसिकली इसका जो सबसे लोएस्ट पार्ट है, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैं लोएस्ट से लेके मैक्सिमम तक जो है वो मैं मॉनिटर कर रही होती थी, मैं उस प्रोसेस का पार्ट बनी, तो मुझे पता चला कि येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जो है वो इंटरनेशनल जर्नल्स इतना टाइम लेते हैं, क्योंकि उनके पास सबमिशंस भी उसी तरह से आ रही होती हैं हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में, तो हर एक को जो है वो पूरे प्रोसेस से गुजारना और फिर उसके बाद उसमें से सिलेक्ट करना, दैट्स व्हाई दे आर मेंटेनिंग देयर क्वालिटी। और आप उनकी खोल के देखें तो आपको पता चलेगा कि यस उनके जो जर्नल्स में आर्टिकल पब्लिश होते हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक कि HEC भी जो है वो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जो इस क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम भी जो है वो अपने जर्नल में इस क्वालिटी को मेंटेन करें और एक अच्छी एग्जांपल जो है वो सेट करें।
1: और मैम ये बताएंगे कि हमारी जो जर्नल की पब्लिकेशन है वो क्या क्वार्टरली है या मंथली है या किस रिलीवेंसी में?
2: इट इज़ बाई एनुअल, और हम साल में जो है वो दो दफ़ा पब्लिश करते हैं, एंड राइट नाउ अभी जो हमारा कमिंग है, जो हमने जून में पब्लिश करना है Volume 3 का इशू नंबर 1, उसके लिए हमारा कॉल फॉर पेपर्स ओपन है, तो इंक्लूडिंग यू एंड अदर स्टूडेंट्स जो कि BS के या MPhil के या PhD के हैं या कोई भी मीडिया के फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो दे आर मोर देन वेलकम कि वो ज़रूर हमारे जर्नल में जो है वो अपनी पब्लिकेशन सबमिट कराएं, एंड देन हम ज़रूर देखेंगे उस प्रोसेस।
1: आपने बहुत मोटिवेट किया मुझे, तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ फैकल्टी आर, बहुत मज़ा आया और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला।
2: थैंक यू सो मच मिस मरियम फॉर इनवाइटिंग मी हियर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अपनी ढेर सारी तारीफें सुन के, और मैं खुद भी यहाँ से मोटिवेट होकर जा रही हूँ।
1: एक्चुअली ये तारीफें वैसे ही नहीं की गई, बिकॉज मैं देखती हूँ जब से मैं यहाँ एज इन फैकल्टी का पार्ट हूँ, मैंने देखा है हर फैकल्टी मेम्बर को, हमारी फैकल्टी इतनी बेस्ट और इतने अच्छे से सब काम करते हैं, तो हर किसी की कहीं ना कहीं पे जो इनपुट्स हैं एफर्ट्स हैं उनको एक्नॉलेज करना बनता है, और फैकल्टी आर का प्रोग्राम होता है इसलिए ताकि हम अचीवमेंट्स की बात करें, हम मीडिया के ट्रेंड्स की बात करें, हम स्किल्स की बात करें, हम ऐड और PR की बात करें, हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें। सो इसी के साथ सामाइन आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, अगले हफ्ते हम एक नए प्रोग्राम और एक नए अच्छे से गेस्ट के साथ आपके साथ होंगे। सुनते रहे FM 92.6, मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ, और आज की हमारी मेहमान थी डॉक्टर सदफ ज़ाहरा।

0: मोबाइल डिवाइस की पीटीए से तस्दीक के मुताबिक जानने के लिए खरीदते वक्त सबसे पहले इसका 15 हिस्सों का IMEI नंबर *#06# डायल करके मालूम करें और फिर IMEI नंबर 8484 पर SMS करें या वेबसाइट से चेक कर लें कि ये डिवाइस पीटीए से तस्दीक शुदा है। PTA
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: यही है मेरी पहली आशिकी।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

पर फन एंटरटेनमेंट न्यूज नॉलेज 24/7 ओनली ऑन UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6, UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया, FM 92.6।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: University Studios, where knowledge is empowerment. This is Magda Blancet.
1: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.pk पर चेक करें।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

0: 0166 on what?
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
3: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
4: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
5: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
1: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز UCP کی دنیا FM 92.6.